0: Mirchi. Buscaba la, buscaba la, sacaba la. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार,
1: hello?
2: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या आप पागल हैं क्या?
2: पागल आप है, पागल आप है, पागल आप है
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया, फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए,
2: आज के बाद घर से आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The Mentalist Suhani Shah.

0: रोमियो तनिष्क बागची की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफ्रीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल थर्सडे मॉर्निंग. इट्स वीकेंड भाई साहब. अगस्त शुरू भी हो गया, अगस्त शुरू होकर एक हफ्ता भी हो गया और हम एज यूजुअल जो रफ्तार के साथ में बढ़ रहे हैं, इट इज अनबिलीवेबल. एक्चुअली फॉर मी ना, मुझे ये हफ्ता और भी ज्यादा छोटा लगा है. वजह ये कि मेरे घर में संडे को भी कुछ गेस्ट आए थे, तो हम ऐसा लग रहा था कि हम वीकेंड मना रहे हैं. फिर कल भी कुछ गेस्ट आए थे, तो ऐसा मुझे लगा कि ये पूरा हफ्ता वीकेंड जैसे ही था. एंड नाउ द एक्चुअल वीकेंड इज हियर एंड वी आर ऑल सेट कि चलो भाई वीकेंड तो मना लेंगे, लेकिन वेदर का हालचाल भी देख लेते कि कहीं बाहर घूमने फिरने लायक है कि नहीं.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: वेदर अपडेट. वेदर ये कह रहा है आज तो मैक्सिमम टेम्परेचर और ज्यादा है भाई, 47 डिग्री सेल्सियस पर है. मिनिमम जो रहेगा वो 35 पर रहेगा. देख रहे हो कि कहाँ से कहाँ आ गए. एक जमाना था जब हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 35-30 ऐसा हुआ करता था. वेल हैविंग सेड दैट, ह्यूमिडिटी जो है वो कल से थोड़ी सी कम रहेगी मेरे ख्याल से. 57% बता रहा है, जबकि कल जो था वो 70% के करीब था. हवाएं नहीं के बराबर चल रही है. ऑल इन ऑल देखो, हमारे कतर में ना गर्मी हो या कुछ भी हो, प्लान्स मिल ही जाते हैं वीकेंड पे करने के लिए. और वो क्या है कुछ ही देर में बताऊंगी राइट हियर ऑन मिर्ची. मीनवाइल गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग के मैसेजेस यहाँ पर भर भर के आ रहे हैं. और अगर आप भी गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कहना चाहते हो तो 5000-1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. यहाँ पर गुड मॉर्निंग का मैसेज अभी फिलहाल आया है मोहम्मद खालिद का. देन आई हैव आलीशान मैसेजिंग मी. देन आई हैव हाई गुड मॉर्निंग आरजे आफरीन. लाइफ इज नॉट अ म्यूजिक प्लेयर टू लिसन to your favorite songs, it is a radio. You must adjust yourself to every frequency and enjoy whatever comes in. Kya baat hai yaar, zabardast message bheja hai aapne. Apna naam bhi likha karo, Imran. It is Imran. Then I have messaging here. Aur kaun hai bhai, apne naam. Sayyed Abdul Hakim ka bhi good morning message aaya hai. So with this, a lot of messages coming our way. Aap jo hai, apna khayal rakhiyega, acche se drive kijiyega. Din ki shuruaat badi khoobsurat si honi chahiye. इसीलिए दिलजीत बाजी का मैसेज, दिलजीत बाजी का गाना योर वे. माइक से दिल तक आप फ्री से.

गुरु की प्यारी सी आवाज राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेकिंग आवर वीकेंड इवन मोर प्यारा प्यारा. लेकिन वो क्या है जो आपका वीकेंड को एकदम परफेक्ट बनाएगा, मैं बताती हूँ भाई. देखिए, पहले तो ये होता है कि वीकेंड अपने आप के लिए होता है, वीकेंड आपके अपनों के लिए होता है, जिनकी वजह से आप मेहनत तो इतना कर रहे हो कि पूरे हफ्ते काम कर लिया, लेकिन किस वजह से भाई आपके अपनों के लिए ना, तो मेनली तो ये होता है कि आपको आपके फैमिली के साथ भरपूर टाइम देना है और साथ ही साथ खुद के लिए भी. ये बेहद ज़रूरी है. अगर खुद आप ज़्यादा खुश रहते हो, आप अपने आप को अच्छे से टाइम देते हो, सेल्फ लव अपेरेंटली जो कहते हैं, सेल्फ लव बहुत सारे तरीके से आता है, गेटिंग अ वेल रेस्टेड स्लीप, और फिर जो पसंद है आपको खाने से, मतलब आप ओवरऑल खुश रहते हो ना, तो आपके आसपास के लोग यानी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ये सभी लोग खुश रहेंगे. एंड हैविंग सेड दैट, वी कैन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट. तो मैं जब भी यहाँ पर कोई इवेंट्स अगर लेकर आती हूँ वीकेंड को लेकर, तो बस कोशिश करिएगा कि अपनों के साथ में, आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, उनके साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा, है ना. तो आपको भी भाई दुगनी खुशी मिलेगी. विद दिस वीकेंड पर बहुत सी चीज़ें हैं हमारे कतर में. डेट फेस्टिवल तो है ही, फिर मॉल ऑफ कतर में भी एक शो चल रहा है, देन कलर वर्स कतारा में साउथ पार्किंग, वहाँ पर भी एक मज़ेदार शो चल रहा है. लेकिन ये एग्जैक्ट डिटेल्स जो है सभी की कुछ ही देर में लेकर आऊंगी यहाँ पर राइट हियर माइक से. दिल तक आफ्टरनून के साथ बने रहिएगा. एंड गुड मॉर्निंग, शुड मॉर्निंग के मैसेजेस यहाँ पर भर भर के आ रहे हैं. 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर. गणेश जी का मैसेज आया है गुड मॉर्निंग कहते हुए. दिस इज मोहम्मद राजू, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप दोनों को. और ये कौन है इनका नाम, वही नाम लिखा करेंगे तो बेटर रहेगा. मीनवाइल 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर. यहाँ पर हैप्पी वीकेंड भी कहते हैं, गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग भी करते हैं.

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: द मेंटलिस्ट सुहानिशा।

सुखी पाजी की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी लापता लेडीज, एंड ऐसी मूवीज मेरे ख्याल से भाई आती है लापता हो जाती है. व्हाई डोंट द फिल्म मेकर्स, या बॉलीवुड कहिए या फिर बस इंडियन फिल्म मेकर्स ऑल, कि क्यों नहीं आप इंस्पिरेशन लेते कि इस लाइंस पे या फिर जस्ट अ जेनरिक अ न्यू टॉपिक कुछ अच्छी मूवीज लेकर आओ यार, लाओ, वेट कर रहे हम. जैसे जहाँ लापता लेडीज की मुझे यहाँ पे मैंने टॉपिक छेड़ ही दिया है, मुझे याद आ गई है, तो रवि किशन का किरदार मेरे ख्याल से इन द एंटायर मूवी वाज माय फेवरेट. मतलब बंदा मेरे ख्याल से ना पूरा कैरेक्टर को घूट के पी लेता है, या फिर आई फील के ही इज लाइक दिस समवेयर. जब मैं उनके एक्चुअल इंटरव्यूज भी देखती हूँ और ये लापता लेडीज में जो पुलिस का किरदार मैंने देखा, कहीं ना कहीं ये बंदा ऐसे ही है, एकदम मस्त मौला बंदा है ना. वेल मस्त मौला तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ आपके वीकेंड को मजेदार बनाने के लिए. सो वेल, वीकेंड आ गया है, इट इज थर्सडे 6th ऑगस्ट, एंड आप कतर में क्या कर सकते हैं. पहले तो भाई मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, वो है कलर वर्स. कतर में पहली बार ही ऐसा कुछ आया है कि एक इमर्सिव दुनिया है. इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट वेयर फर्ज कीजिए कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए हो, एंड देन यू आर सपोज टू ब्रिंग देम बैक. हाउ? बाय प्लेइंग दिस गेम. अब वो क्या है, वो वहां पर ही जाकर आपको समझेगा ना. कतारा साउथ पार्किंग में है. वीकेंड्स पर टिकट इसकी मेरे ख्याल से कुछ 50 कतरी रियाल और समथिंग इज देयर, बट वीकडेज में इसकी टिकट 35 कतरी रियाल है. और देखो, ऐसे तो हम कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं तो यूं, अगर मॉल जाते हैं तो यूं खर्च हो जाते हैं पैसे, अगर हम कोई प्ले जोन जाते हैं तो यूं खर्च हो जाते हैं. लेकिन ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हमारे कतर में आते हैं ना, भले ही वो टॉय फेस्टिवल ही क्यों ना हो, भले ही वो कलरवर्स ही क्यों ना हो, आई थिंक सो वी शुड जेन्युइनली मेक एन एफर्ट एंड गो फॉर सच काइंड ऑफ इवेंट्स. ताकि क्या है कि जो मेकर्स ये है, जो मेकर्स नहीं इन द सेंस जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या कतर की गवर्नमेंट, उनको लगेगा कि हाँ लोग आते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, और ऐसे ना हमारे लिए और भी ज़्यादा इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे. सो वेल, एक चीज तो मैंने बता दी है, वो है कलरवर्स. और भी चीजें बताते रहूंगी यहाँ पर थ्रू आउट द डे, लेकिन जहां मैं रियल इवेंट्स, ऑन ग्राउंड इवेंट्स की बात करती हूँ, एंटरटेनमेंट की बात करती हूँ, मैं ओटीटी एंटरटेनमेंट की भी बातें करती हूँ. तो कुछ ही देर में ये भी बताऊंगी भाई ओटीटी पर क्या देख सकते हो आप ड्यूरिंग द वीकेंड, बिंज वॉच कर सकते हो या फिर बस एक मूवी ही है, क्यों ना एंजॉय कर सकते हो, वो क्या है कुछ ही देर में. Hey, that's how you enter the weekend, boss. Dhurandhar ka ye gana, Flipper, achhe ka gana. Enjoy it on Mirchi. Mike Sitalta Gafshin ke saath it's hot.

0: خوش رايك صح.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah, live

0: Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: Hello, Mirchi Helpline.
4: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
3: क्या बताओ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूं?
4: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।

0: वेल महमूद और राघव चैतन्य की आवाज में ये गाना राइटर और मिर्ची फ्रॉम द मूवी कॉकटेल टू आफरीन जुड़ गई है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:03 की तरफ और ओटीटी पर क्या चल रहा है जरा सुन लेते
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेल सीम्स लाइक कि आपका वीकेंड ना टीवी के सामने ही गुजरने वाला है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है राइटर और मिर्ची मॉर्निंग्स एंड ओटीटी मार्केट का क्या हाल है जरा देखे।
2: अरे भाभी जी एकदम लेटेस्ट डिजाइन है
3: फ्रेश है भैया फ्रेश है
4: एकदम नया आया है।
5: अरे मार्केट में नया क्या है
0: वेल नया तो बहुत कुछ है स्टार्टिंग विद आदर्श बाल विद्यालय विच इज स्ट्रीमिंग ऑन Amazon प्राइम वीडियो और ये वाला तो मैंने ना वीकडे पे ही कंप्लीट कर लिया था एंड इट इज सो मजेदार लेट मी टेल यू इट इज अबाउट अ स्कूल जहां पर के मेनन अब के मेनन का नाम है तो सोचिए कितना मजेदार होगा एंड ही इज प्लेइंग एन एक्सेंट्रिक हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी एंड कॉमेडी रोल में ना के मेनन को मैंने अक्सर देखा नहीं है ज्यादातर तो बट यर देर इज अ लॉर्ड ऑफ क्वर्की ग्रुप ऑफ टीचर्स ऑन अ मिशन टू ट्रांसफॉर्म अ फेलिंग Delhi government school in hopes of earning a fully funded trip to Cambridge. बहुत मजे की कहानी है स्टार कास्ट भी बहुत अच्छा है और एक तरह से कह सकते हैं कि इट्स अ सटायर कॉमेडी सटायर है एंड आई थिंक सो फैमिली के साथ देखने के लिए बहुत बेहतरीन है ये अपार्ट फ्रॉम दैट अगर रोमांटिक कुछ देखना चाह रहे हो तो मुसाफिर कैफे इज इन लॉर्ड ऑफ टॉक्स ये भी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है एंड ये हमारे विक्रंत मासे का है और साथ में इनके नजर आती है वेदिका पिंटो एंड ऑल्सो महिमा मकवान I think so. I'm seeing them for the first time. But yes, it's a story about Chandar, a software engineer, जिसके सपने हैं writer बनने के, लेकिन life कुछ U-turn ले लेती है. And yes, सब कुछ romantic सियापा जो होता है, वो सब कुछ है इसमें. But let's talk about movies जो theater में आई थी और फिर वो अब OTT channels पर आ गई है. एक तो है जवानी है तो इश्क होना है. And then David Dhawan की ये movie जो है, Varun Dhawan की है, Mrunal Thakur, Pooja Hegde. ठीक है. I mean, I don't know. If I should recommend it or not, लेकिन अगर आप डेविड धवन फैन हैं तो ये भी देख सकते हैं लेकिन one thing which I am recommending and you should watch is मैं वापस आऊंगा मैंने बहुत बार कहा है नसीर साहब दिलजीत दोसांझ शर्वरी और वेदांग की ये मूवी इज रियली अ वेरी गुड रोमांटिक ड्रामा मूवी डायरेक्टेड बाय माय फेवरेट इम्तियाज अली अब क्योंकि ये ओटीटी पर आ गया आप बहाने नहीं दे सकते हो बॉस अब तो देखना पड़ेगा समथिंग जो आप आकर कहोगे कि हाँ यार आफरीन सही कह रही थी बहुत मस्त मूवी है ये सो यस ये उन लोगों के लिए भी है जिनके जिंदगी में पेशेंस है ठीक है जो आजकल की जिंदगी में हम इतने फास्ट फॉरवर्ड में चीजें देखते हैं और इतना डिशुम डिशुम देखते हैं ना वो तो प्लीज बिल्कुल भी मत देख लेना ये मैं वापस आऊंगा ठीक है बहुत ठहराव वाली और बहुत ही खूबसूरत मूवी है विद दिस आफरीन ने बहुत सारी चीजें बता दी है आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से यू गॉट अ स्टे ट्यून्ड विद मी माइक से दिल तक राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बना दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या? ये
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं,
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
0: नहीं,
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
0: नहीं सर, क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah live.

देखो, अगर आपकी फैमिली आपके होम टाउन गई है और अब उनका लौटने का समय आ गया है तो ये खबर जरूर आपके लिए है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सो देखिए, जब हम हमारे होम टाउन से लौटते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लेकर आते हैं। हाँ जी, कपड़े होते हैं, खाने की चीज़ें होती है, लेकिन इन सब में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली मेडिसिन की अगर बात करें तो फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आई है जो मेरे ख्याल से आपको, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके अपने लोग जो वहाँ पर है, जो लौटने वाले हैं कतर, इनके साथ शेयर करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। बात कुछ ऐसी है दैट कतर के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कंट्रोल्ड मेडिसिन फॉर ट्रैवलर्स के लिए एक नया ई सिस्टम लॉन्च किया है। अगर आप कतर से बाहर जा रहे हैं या फिर कतर आ रहे हैं और आपके पास कोई कंट्रोल्ड मेडिसिन है तो आप पहले ही ऑनलाइन परमिट अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और परमिट इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव भी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंट्रोल्ड मेडिसिन सुनते ही ऐसा मत सोचिए कि हर बीपी, डायबिटीज या फीवर की मेडिसिन के लिए परमिट चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल मेडिसिन वो होती है जिनमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हुए, स्लीपिंग टैबलेट्स हुई, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन, ADHD की मेडिसिन और कुछ प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप्स भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। इसीलिए अगर आप रेगुलर मेडिकेशन लेते हैं तो एक बार ऑफिशियल लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, और अगर आपकी मेडिसिन उस लिस्ट में है तो ट्रैवल सोचिए कि हर बीपी, डायबिटीज या फीवर की मेडिसिन के लिए परमिट चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल मेडिसिन वो होती है जिनमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हुए, स्लीपिंग टैबलेट्स हुई, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन, ADHD की मेडिसिन और कुछ प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप्स भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। इसीलिए अगर आप रेगुलर मेडिकेशन लेते हैं

एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे। मिर्ची, it's hot.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डीरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. टीएनसी सप्लाई.
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo. बुक योर्स नाउ.
1: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
2: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
1: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ ओ हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi, it's hot.

0: What a nostalgic गाना ना अभिजीत की आवाज में ये गाना. Well, let me tell you, ये वो है जिन्होंने सबसे पहला इंडियन आइडल जीता था. And for the matter of fact कि भाई उसके बाद मुझे कोई इंडियन आइडल विनर का नाम याद ही नहीं है. वो फर्स्ट कहता ना हमेशा स्पेशल होता है. That's absolutely true. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम कि हम यहाँ पर मिलके खेले वो गेम जो अक्सर इस वक्त पर खेलते हैं हम. और आज का ना मैंने सोचा कि चलो इजी देते हैं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. ऐसा कुछ सवाल सवाल मैं आपसे आज पूछने वाली हूँ. एक मूवी का सीन है जो मैं आपको सुना रही हूँ. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज अर्ली 2000 की बात कह सकते हैं हम. हाँ, तभी की बात है, तभी का सीन है. मूवी बहुत ही आसान है. एंड ईयर इट गोस.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: मैंने कहा था चोर भागोगे पकड़ लूंगा, और मैंने भी कहा था तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पकड़ नहीं पाओगे.
0: ऑल राइट, कौन है ये, किसकी आवाजें हैं? आई थिंक सो आवाज तो आपने यूं पहचान ली होगी, और मूवी का नाम पहचानना उसके बाद में डिफिकल्ट नहीं होगा. एंड आई हैव सीन, ओह माय गॉड, माय मैसेजेस आर फ्लडिंग. नंबर तो सुन लो भाई, 5000196 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. इस पर आकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो कि आखिर ये कौन सी मूवी है. एंड आई डोंट थिंक सो आई हैव टू थ्रो अराउंड एनी हिंट्स दिस टाइम, क्योंकि सभी का मैसेज जो आया है, कुमेल सुलेमान का मैसेज है, देन आई हैव अमर मैसेजिंग मी, देन आई हैव चार्ली मैसेजिंग मी. चलिए मैं इनको रिप्लाई करती हूँ, तब तक के लिए आप जुबिन नौटियाल की आवाज में. हाय, थोड़ी देर की दूरी बर्दाश्त कर लीजिए. माइक से दिल तक आप फ्रीन के साथ बने रहिएगा. मिर्ची उठ.

0: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
0: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
0: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
2: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
6: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
3: The mentalist Suhani Shah.

0: अल्लाह के बंदे अब तो हंस दे भाई, वीकेंड जो आ गया है हमारा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और जब भी आप लोगों के मैसेजेस आते हैं ना इस वक्त पर, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मुझे सर सुबह सुबह तो मैं आ जाती हूँ इतनी जल्दी यहाँ पर, और फिर मैं बहुत ऐसे मिस करती हूँ कि भाई कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ ऑफिस में, बाय द वे लेट मी टेल यू। और फिर ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो बात करने वाला रहना चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। तब आप लोगों के जो मैसेजेस आना मॉर्निंग में शुरू हो जाते हैं गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग के, उसके बाद में फिर ये जो आंसर्स के लिए मैसेजेस आते हैं ना, आई टोटली इन्जॉय दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन सो मेनी मैसेजेस हियर। और बात करते हैं अबाउट आज का गेम, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट हम खेल रहे थे। और चलिए पहले ही नंबर बता के रख देती हूँ, 5000 1896 इज माई नंबर। और आज का सीन क्या है चलिए वो सुन लेते हैं।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: मैंने कहा था ना, चोर भागोगे पकड़ लूंगा, और मैंने भी कहा था तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पकड़ नहीं पाओगे।
0: Alright, what a movie! मेरे ख्याल से इसके बहुत सारे sequel आए हैं, लेकिन मैं I think so the first one was the best out of all, है ना? Well, कौन सी movie है ये मैं थोड़ी बताऊंगी, ये तो आप लोग ही बताओगे ना। So let's hear them.
3: हाँ जी, मूवी का नाम मालूम नहीं, अजय देवगन।
0: हाँ जी मोहम्मद अख्तर। All
4: and,
0: right.
4: Directed by Sanjay Gandhi, produced under Yash Raj banner, music by Pritam Da, and the protagonist was.
0: Wow, wow, wow! आप movie बता देते हो. हाँ जी बिल्कुल.
5: Hey Afreen, good morning. The movie is Dhoom, the first Dhoom with Abhishek and.
0: डायलॉग यहाँ पर सुनाया था। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, जुलकरनैन का मैसेज आया है, देन आई हैव योर हुज दिस, अपना नाम नहीं लिखते हो आप, इमरान अहमद शेख का मैसेज आया है, देन आई ऑल्सो हैव फराज का मैसेज, देन मोहसिन का मैसेज, मोहम्मद अमर का मैसेज, और कौन है ये अपना नाम नहीं लिखोगे तो मैं नहीं बता सकती हूँ ना, सुलेमान का मैसेज, विनोद सहानी का मैसेज, हुमैल का मैसेज, और अगर कोई मिस हो गया है तो चार्ली का मैसेज, तो भाई आई एम सॉरी। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। यो मतलब ये म्यूजिक सुनते ही ऐसा लगता था ना कि हम एकदम बाइकर मोड में आ जाए। समथिंग स्पेशल वाज देयर डेफिनेटली अबाउट दिस म्यूजिक। टाटा यंग की आवाज में ये गाना एंजॉय कीजिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है, मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: वेल, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:01 की तरफ और अगला गाना आवारापन 2 यानी इमरान हाशमी की नई मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
0: मिर्ची फ्रेश माल
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, दैट वॉज हमारा पंटू का गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। आपके साथ जुड़ गई है आफरीन। और देखो, वीकेंड आ गया है ना, तो ये काम लगे हाथ निपटाई लो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, वीकेंड आ गया है ना, तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वीकडेज में आपके काम में ऐसे एक लिस्ट में होती है जो आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो वो जो है वो वीकेंड में आप करते हो। वैसे ही ऐसा आपने बहुत कई बार हमारे रेडियो पर सुना है, अब मिर्ची वन के पेज पे देखा है, और बात तो अब हर जगह फैल ही गई है। पता तो चल ही गया है कि देखो सुहानिशा आ रही है ना, तो बस क्या है, टिकट निकाल लो, एससीटीज नूनो, वीकेंड पर बैठो, दोस्त यारों को पूछो, चलो यार साथ में जाते हैं, मजा आएगा, कुछ अलग एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि कतर में तो हमने बहुत सारे अलग अलग किस्म के इवेंट्स देखे हैं, कोई सिंगर का इवेंट देखा है, फिर हमने डांसिंग इवेंट भी देखा है, जैसे सलमान खान आए थे, फिर शाहिद कपूर आए थे। लेकिन मेंटलिस्ट, वो भी इंडिया के नंबर वन मेंटलिस्ट यानी सुहानी शाह, जब कतर में होगी और लाइव उसे एक्सपीरियंस करने का मौका जो रहेगा वो कैसा रहेगा, यही बात तो है जो शब्दों में यहाँ पर मैं बयां नहीं कर सकती जब तक कि मैं खुद उसे लाइव ना देखूँ, तो है ना। तो मैंने भी लाइव ये देखने के लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आई हैव सीन सेवरल वीडियोज अक्रॉस सोशल मीडिया जहाँ पर वो धोनी के साथ में शी इज़ डूइंग हर मैजिक, आई वुड से, या फिर वो अपने क्या कहते हैं, वो माइंड रीडिंग है। यार आई एम फ्लैबगास्टेड ऑनेस्टली सीइंग हर वीडियोस के हाउ कैन शी गेस इट। धोनी थे, सलमान खान थे, आमिर खान एंड मैनी मैनी मैनी मोर। मतलब आपने सीरियसली सुहानी शाह को बहुत बार देखा है, सो वाई नॉट विटनेस हर लाइव इन कतर। 25th of September इज द डेट, QNCC इज द प्लेस, एन एस सिटी एंड सोनो सिटी इज द प्लेस वेयर यू गोना गेट द टिकट। और बस मुद्दे की बात यह है, 20% ऑफ पर टिकट्स मिल रही है, अभी मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी, तो क्या है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी अभी के अभी। मीनवाइल शो को आगे बढ़ाते हुए और गानों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, ऐश किंग और सचिन जिगर की आवाज में अगला गाना माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या मत तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे।
2: क्या हो गया
3: सर, मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है। मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया है, क्या कर दिया आपने।
2: क्या हुआ क्या है
3: सर, एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम क्या है?
3: चंद्रो फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार,
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप।
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: थोड़ी ना
3: मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता रहे,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे,
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है, आप फालतू
4: में। सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू को।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah, live.

Well, with this movie उड़ता पंजाब, शाहिद कपूर, you showed your range, yeah. मतलब आप सिर्फ एक चॉकलेट बॉय टाइप्स हीरो ही नहीं हो, आप वायलेंस भी नहीं करते हो इतना ज्यादा मूवी में, बट फिर भी यू आर सो कन्विंसिंग. आई मीन दिस मूवी रियली शोड अ वाइड रेंज इन योर एक्टिंग स्किल्स. एंड टॉकिंग अबाउट उड़ता पंजाब ना, करीना कपूर थी इसमें, दिलजीत दोसांझ थे, स्टारकास्ट आलिया भट्ट, ऑफकोर्स इतना बढ़िया स्टारकास्ट, इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ. आई ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएट जब ऐसे टॉपिक्स पर जो एक्चुअल रूट कॉज होता है, कैसे होता है, कैसे प्रॉब्लम्स चल रही है, उस पर ऐसी कोई मूवीज बनती है ना जो लोगों को थोड़ा सा एक लाइमलाइट में लेके आती है कि क्या है सिनेरियो. आई जेन्युइनली अप्रिशिएट. और ऐसी मूवीज अब कहाँ ही आती है बताओ माय फ्रेंड्स. Very good morning and welcome back. Simply Afreen के साथ बने रहिएगा. और यहाँ पर फिलहाल वीकेंड की जब बात चल रही है तो फिर मैंने सोचा कि वीकेंड पर इम्पॉर्टेंट काम निपटा लेने चाहिए, तो बस एक्सचेंज रेट का फायदा उठाकर भी पैसे भेज दीजिए सही वक्त पर. जैसे आज का एक्सचेंज रेट कहता है, कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.08, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.22, बांग्लादेशी टाका इज एट 33.97, श्रीलंकन रुपीज इज एट 92.08 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.68. ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. और इस ब्रेक के उस पार मैं लेकर आ रही हूँ मेरा मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, जिसमें आज ना कुछ तो नया ही करने वाली हूँ. वो क्या, उसके लिए बने रहिएगा माइक से दिल तक आप ट्रेन के साथ. अनमिर्ची, इट्स हॉट.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: The Mentalist Suhani Shah live

0: in association with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: Well, coming up next track, केके की आवाज़ में शंकर बीट्स का ये गाना, ये खास मैंने सोचा गाने के पहले इसके बारे में बात करूं ताकि आप ये गाना बिल्कुल सुकून से एंजॉय कर पाए, इनफैक्ट ये गाने को महसूस कर पाए. शंकर बीट्स का ये गाना है जो एक चर्च में कहीं शूट हुआ गया था, इफ आई एम राइट. और ये गाना ना सभी लोग रेजोनेट करेंगे, रिलेट कर पाएंगे इसके लिरिक्स से. अब वो क्यों, आप सुन लीजिए और खुद समझ लीजिए. Playing next, Shaitan and Mirchi, Mike Sadhir Takashin ke saath bane rahega. It's hot.

What a beautiful gana, Jhankar Beats movie se, writer, composer iske Vishal Shekhar hai, gana KK ne gaya hai, in fact iske lyrics bhi Vishal Shekhar ne hi likhe hai, in fact Vishal Dadlani ne likhe hai, to be specific. Main hoon Afreen aapke saath, dosto. और वक्त हो चला है कि हम हमारा मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोलें. क्या है आज के मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में? मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स. और आज के बॉक्स में से निकली है एक ऐसी धुन जो बैकग्राउंड म्यूजिक की धुन है. इट्स नॉट फ्रॉम अ सॉन्ग और एनीथिंग, लेकिन ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ये ना कोई हीरो या हीरोइन के लिए यूज नहीं की गई है, ये एक विलन के लिए यूज की गई है. एंड व्हेन यू हियर इट ना यू विल बी लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो फैमिलियर. बताना कौन सी मूवी का ये बैकग्राउंड म्यूजिक है. सो हियर इट गोस. याद आ रहा है कुछ? वेल, इट वॉज यूज as a dashing entry music for a villain. 90s की ये movie है और बहुत ही popular movie में से है. इसमें हमारे hint दे दो क्या? चलो देख देती हूँ. इसमें हमारे भाईजान भी है, लेकिन ये जो music का इस्तेमाल किया गया है ना, इसके villain के लिए किया गया है. 5001896 is my number. फिर से सुना देती हूँ, शायद आपको याद आए. Well, बता दो 5001896 पर कि यार ये कौन सी मूवी की सीन है या फिर ये कौन सी मूवी का ये म्यूजिक है, म्यूजिक पीस है. 5001896. Meanwhile, फरहान अख्तर की आवाज में एक लगाना प्ले राइट हियर फॉर यू. कौन सा ये गाना? एंड एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया।
1: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
2: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah live.

0: Well, Sunidhi Chauhan और गायत्री अय्यर की आवाज में ये गाना ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड. और आज जो मैंने गुगली फेंकी थी ना आपके तरफ, आपसे संभाली गई नहीं है. देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो इसका सवाल दे पाए. वेल, कौन सा सवाल है, क्या है जो इसका जवाब दे पाए रहा था, कौन सा सवाल है क्या है, लेट मी टेल यू. मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स जो मैं खोलती हूँ, हर रोज़ कुछ नया चैलेंज लेके आती हूँ. और आज मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स जब खुला है तब उसमें से क्या निकला है दोस्त? मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स. तो उसमें से एक धुन निकली है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ अ मूवी. लेकिन ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, ये कोई हीरो, ये कोई रोमांटिक, ये कोई हॉरर, कोई ऐसी नहीं है. ये एक विलन की एंट्री के लिए है. यस, और ये 90s में है. ठीक है, कौन सी है ये? लेट्स हियर इट आउट. Well, बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हम देखें, एंट्री म्यूजिक, तो हमें ना एनिमल के बॉबी देओल की ही पता है. वो कौन सा था, जमाल कुरु, आई जस्ट फॉरगॉट दैट सॉन्ग ऑल्सो, हाउ लेम ऑफ मी. लेकिन यस, ऐसे ही 90s में भी होता था भाई. एंड ये किसकी है आवाज़ या फिर किसके लिए यूज की गई है? लेट्स हियर द आंसर. हाँ विवेक,
1: आई थिंक द बैकग्राउंड म्यूजिक इज फॉर निर्मल पांडे.
0: यस, आई एम सो सरप्राइज्ड कि तुम्हें निर्मल पांडे याद है. लेकिन लोगों को बता दो कि ये मूवी कौन सी है. ये है प्यार किया तो डरना क्या. यस, ये वो मूवी का था जहां पर सलमान खान और काजोल और अरबाज खान थे, धर्मेंद्र थे. एंड उसमें जो विलन था, उसकी जब भी एंट्री होती थी ना, तो ये गाना बजता था. एंड आई एम सो श्योर कि आपने ये सुना है और आपको बस याद नहीं आ रहा था कि यार ये कौन सी मूवी का है, कौन सी मूवी का है. सो चलिए, प्यार किया तो डरना का क्या. अगला गाना सुनाती हूँ मैं कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: the way Raghav plays around with these old classics, na, I think so no one does better than him, hai na? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टर इन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए भाई, थर्सडे है, थर्सडे की एक रौनक अलग ही लगी होती है ना, कि हम क्या करेंगे. पहले तो लोग ये सोचते हैं, आई डोंट नो इफ यू आर इन दिस कैटेगरी, कि पहले मैं सोचती हूँ कि भाई मैं मेरी नींद पूरी करूँगी. आई एम सो हैप्पी कि भाई फ्राइडे और सैटरडे को मुझे थोड़ा सा लेट उठने का मौका मिलेगा. डू यू ऑल्सो फॉलो इन द सेम कैटेगरी कि नींद बहुत ज़रूरी है बॉस? बाद में एंटरटेनमेंट आता है, बाद में लोगों को मिलना शलना सब कुछ करेंगे हम, पहले हम सो कर ले लेंगे. सो इफ यू आर इन द सेम थिंग, लेट मी नो. 5000196 इज माई नंबर. वी शुड एक्चुअली कनेक्ट देयर. लेकिन उसके अलावा नींद हो गई, चलो पूरी समझ गए हम, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कहीं घूमने फिरने अगर निकलते हैं तो फिर मैंने बताया कि एक तो खजूर, मतलब डेट नहीं है आपके पास तो खजूर वाले सेक्शन में चले जाइए, जहाँ पर ईस्टर्न स्क्वायर में यानी सुख वाकिफ में वहाँ पर डेट फेस्टिवल हो रहा है. बहुत सारे किस्म के, बहुत सारी वैरायटी के डेट्स आपको वहाँ पर नजर आएंगे. देन ऑल्सो वी हैव इज कलोवर्स विच इज़ हैपनिंग एट कतारा, साउथ पार्किंग में है ये. एंड उसके अलावा तो भाई जगह जगह पर हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है एंड इट्स हैपनिंग अक्रॉस ऑल द मॉल्स इन कतर. सो वहाँ पर वो भी चल रहा है, साथ साथ बच्चों के लिए टॉय फेस्टिवल के एक्टिवेशंस भी चल रहे हैं. सो आई थिंक सो यार, रौनक तो लगी हुई है. आउटडोर में तो नहीं, लेकिन कतर में जगह जगह इंडोर्स में रौनक काफी लगी है. और बस ये एक दो महीने का वक्त, और दो महीने में शायद ये सारी रौनक इंडोर से निकल के बाहर भी आ जाएगी. लेकिन फिलहाल आपके लिए जो प्रबंध किया गया है उसका पूरा तरह से इंजॉय कीजिए, इस्तेमाल कीजिएगा. चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. और बच्ची घड़ी का इशारा फिलहाल तो हो रहा है 9:06 की तरफ.
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
0: और अगला गाना गुरु की आवाज और नेहा कक्कड़ का साथ, राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको, वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
1: जी बोल रहा हूँ।
0: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
1: कहाँ ना सर?
0: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
1: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
0: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
1: मैं दे दूंगा।
0: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
1: 4 यूनिट?
0: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं
1: चाहिए
0: इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
1: क्या चढ़ाना
0: है? यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
1: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है।
0: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
1: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
0: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
1: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यूरिन का भी कुछ होता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
1: जी, जी
0: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
1: अच्छा,
0: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
1: क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा।
0: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
1: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
0: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
1: जी
0: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
1: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
0: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

0: अरिजीत सिंह की इतनी दर्द भरी आवाज और क्या खाकर ऐसे गाते हो यार अरिजीत। मतलब अगर किसी को हार्ट ब्रेक नहीं भी हुआ होगा या दर्द नहीं भी है, वी फील द पेन इन योर वॉइस। या देखिए, ये बात करते हैं मिर्ची में जो माहौल चल रहा है उस बारे में कि हमारे यहाँ ना जब भी कोई इवेंट होता है ना तो कोई शादी ब्याह से कम नहीं होता है। तैयारियां तो ऐसे उच्च चरम पर रहती है और हर कोई हर काम कर रहा होता है एंड सबका रहता है कि भाई चलो घर का कोई कार्य है बस अच्छे से निपट जाए, यही फीलिंग के साथ हम सारे लगे होते हैं। और ऐसे ही कुछ अब हमारा सारी एनर्जी और सारा जो है प्लानिंग वो लगी हुई है 25 सितंबर सुहानी शाह को वेलकम करने के लिए। यस, पहली बार हमारे कतर में सुहानी शाह द नंबर वन इंडियन मेंटलिस्ट, उनका शो होने वाला है। एंड सुहानी के कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि वो किस तरह से आपका माइंड रीड करती है, यू कैन जस्ट नॉट गेस। पूरे शो में बस इतना ही मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप यही कहते रहोगे, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, कैसे किया इसने ये, अरे ये कैसे हो सकता है। सिर्फ सवाल सवाल सवाल और शायद कुछ सवालों का जवाब आपको वहां पर मिल जाए। तो फिर पहुंच जाइए ना 25th of September, QNCC इज द प्लेस। एंड यस एस सिटी और स्नूनू सिटी, यहाँ से जाकर आपको टिकट लेनी है। तो इंतजार किस बात का, वीकेंड आ गया ना, फटाफट दोस्तों यारों के साथ में प्लान बनाओ, बैठो डिस्कस करो कि जाना है ये जाना है, हमें ये टिकट लेना है, ये कैटेगरी की लेनी है। और जब साथ में कोई इवेंट या करने देखने जाते हो ना तो बस बड़ा मजा आता है ना। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ती हूँ मैं जुबिन नौटियाल की आवाज में,
1: तेरे जाने का
0: अनदर हार्ट ब्रेक गाना। बट स्टे अराउंड क्योंकि इसके बाद मैं मजेदार गाने भी लेकर आ रही हूँ। अनमिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu, बुक योर्स नाउ।
5: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव।

0: ब्यूटिफुल सॉन्ग कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फीचरिंग मरन ओनली मनीषा कोइराला, खामोशी का ये गाना राइटर अनमर्शी। और जब दिल सुन रहा होता है ना तो बातें भी बिल्कुल दिल से ही निकलती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को। और जब बातों की बात हो रही है, अल्फाजों की बात हो रही है, तो मेरे डायरी खोलने का भी वक्त हो चुका है।
1: आफ्रीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, उम्र गुजरी तेरा चेहरा देखते, उम्र गुजरी तेरा चेहरा देखते, वक्त जो होता तो दुनिया देखते। उम्र गुजरी तेरा चेहरा देखते, वक्त जो होता तो दुनिया देखते। शक्ल आईने में भी तेरी ही थी, शक्ल आईने में भी तेरी ही थी, इससे आगे तुझको कितना देखते। कितनी खूबसूरत सी बात है ये, और बहुत ही गहरा थॉट है ये। जो बे इंतहा इश्क में है वो बिल्कुल समझ पाएंगे। और बस इसी शायरी पर और इसी मूड पर अगला गाना हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज अगेन। Giving the right feel and the right emotion to this shayari on which it's hot.

0: Hollywood Bollywood Boulder Only on Mirchi It's Hot
1: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
2: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
1: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डर बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इजंट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
3: The mentalist Suhani Shah live.

0: देखा जाए तो तेरी मेरी कहानी आज की बिल्कुल सेम है। जो हमारी खुशी है ना, वो बिल्कुल सेम लेवल पे आती है जब बात वीकेंड की होती है ना। वैसे देखा जाए तो यार आज थर्सडे है, वीकेंड जो वीक है अपना अब तक के पूरा हुआ नहीं है। ऑफिशियली तो अपना जो फ्राइडे है कल से वीकेंड शुरू होने वाला है, लेकिन कभी कभी मेरे ख्याल से ना बेस्ट प्लान्स वीकेंड के यही होते हैं। मेरे से सीखो, जहाँ कोई अलार्म नहीं होता है, जल्दी उठना नहीं होता है, बस मी टाइम सबसे सुकून वाला होता है, दैट इज़ द ब्यूटिफुल वीकेंड फॉर मी। एंड आई एम रियली लुकिंग के यार ये वीकेंड कुछ ना करते हुए मैं बस गुजारूं। लेकिन आफरीन है ना, आफरीन है वही नहीं बैठ पाएगी जब तक आफरीन चार लोगों को नहीं मिलती है, चार लोगों के साथ खाती पीती नहीं है, उठती बैठती नहीं है, कैचअप नहीं करती है अपने दोस्तों यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तब तक मुझे चैन नहीं आता है। जबकि हमेशा मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं बस ये वीकेंड कुछ नहीं करूँगी, आराम करूँगी और मेरा वार्डरोब लगाऊंगी और मेरा घर ठीक करूँगी, लेकिन नहीं इट्स अ साइकिल। वेल आई वी द सेम, या फिर आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो कि नहीं यार आफरीन हमारा वीकेंड इतना प्लान रहता है और मैं सारे काम मेरे फिनिश करता हूँ सो दैट आई एम प्रेप्ड अप फॉर द वीक। सो प्लीज़ आई नीड टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम यू। 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर एंड लेट्स कनेक्ट देयर। मीनवाइल हैप्पी वीकेंड। बहुत ज़्यादा खुश रहिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यार खुश रहो, आपके आसपास के लोगों को आपकी एनर्जी से एनर्जी डिराइव करते हैं और वो खुशी जो होती है ना कंटेजियस होती है। सो बस जब आप खुश रहोगे तो सभी लोग खुश रहेंगे आपके अगल बगल। चलिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में अगला गाना सुनाते हुए मैं लेना चाहूँगी अलविदा।
1: या तो बर्बाद कर दो,
0: टाटा बाय बाय सायोनारा, मिलेंगे अगले हफ्ते। माइक से दिल तक आफरीन हमेशा आपके दिल में रहेगी। अनमिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

कुमार सानू की खूबसूरत सी आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज ए काश के हम काश यार ये जो शब्द है ना ये जिंदगी में बड़ा कमाल है मिर्ची अंशु हेलो वेलकम बैक यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विथ यू वेल आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक नए दिन की शुरुआत करते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड सच कहूँ यार हर एक दिन जब गुजरता है ना तो कोई ना कोई रात में सोने से पहले ख्याल मेरे जहन में ज़रूर आता है या यूँ कहें कि मैंने एक आदत बना ली है एक प्रैक्टिस कर ली है कि ऐसे ख्याल को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करूँगी जो कल को बेहतर करे यार अक्सर ना हम एक ख्याल में अक्सर खोए होते हैं कि काश ऐसा होता काश मैंने ऐसा कह दिया होता काश वो बात उस समय मैंने माफ़ कर दी होती काश मैंने पहले ज़्यादा कोशिश या मेहनत कर ली होती एंड बस ये जो काश है बहुत सारे पहलुओं को ज़िंदगी में शामिल करके ही रखता है लेकिन एक बात कहना चाहूँगी जो बात बीत गई शायद वो हमारे हाथ में नहीं लेकिन जो बात आज है वो हमारे हाथ में ज़रूर है आज की कोई बात कल के लिए काश ना बने इसके लिए हम यार काश कोशिश कर लेते तो कल भी अच्छा होता ये बात लाइफ में शामिल कभी ना हो इसकी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं बोले इतना ही कहना चाहूँगी एवरी सिंगल डे इज़ अ प्रेजेंट एंड दैट्स हाउ एंड दैट्स व्हाई इट इज़ टाइटल्ड एज प्रेजेंट सो मेक द मोस्ट ऑफ द गिफ्ट विच इज़ बीइंग एलोकेटेड टू यू विच इज़ बीइंग अवेल टू यू जिंदगी को मस्ती में जिए खुशी से जिए खुशहाल खुशनुमा तरह से जिए बाकी भाई एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए मैं तो हूँ ना टिक के बने रहें सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट वैसे बता दूँ अगला गाना हाईवे पर लेके जाएगा आपको एन्जॉय

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है, रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है, क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है, क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिया यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो, बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोज।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी
2: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
1: लेंस लगाया नहीं
2: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
1: नहीं
2: दीदी, मैं कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है, शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी, दिखाइए आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live.

0: गुरु रंधावा एंड किरण बाजा की पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ गजब गाना इट इज। ये खूबसूरत सा गाना था, उस वक्त मैंने आपको सुना दिया। साथ ही भी बता दूं, मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10:19
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: भाई साहब देखो, बात इतनी है कि पानी हाथ से निकल जाए उसके पहले हम उसे मतलब स्टोर करने की कोशिश कर लें।
2: मिर्ची अंशु।
0: वेल देखिए, बात इतनी है कि कई बार ना हमारी जिंदगी बस इन्हीं बातों में निकल कर रह जाती है। यार मैंने भी सोचा था कि क्यों ना ऐसा कर लूं, लेकिन यार क्या बताऊं, सोचते ही रह गया। तो जिंदगी में ना सोचना जो है जरूरी है, लेकिन जहां सोचना जरूरी है बस वहीं जरूरी है, उस जगह पर क्यों ही सोचे जहां पे सोच की कोई जरूरत ही नहीं है। वेल इस वक्त बिना सोचे समझे फटाफट से कोई काम करना है तो एक ऐसी जगह पहुंचना है जो आपको बहुत कुछ सोचने पर फाइनली इवेंचुअली मजबूर कर ही देगी। वेल अगर एक इंडिया की ऐसी आर्टिस्ट की बात करूं जिसे बखूबी पता है कि आपके दिमाग को काबू किस तरह किया जाए, अविंग सदर आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसे पूरी तरह से पकड़ लिया जाए, जो सोचना समझना सबकी समझ के बियॉन्ड है उसे भी पूरी तरह से समझ लिया जाए, तो वो है भारत की मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह। एंड सबसे खास बात जो अब तक आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि कतर की हिस्ट्री में पहली बार सुहानी अपने मैजिक के साथ, अपने इल्यूशन के साथ, अपने स्किल एंड टैलेंट के साथ हम सबको मेजमराइज करने आ रही है। एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन 25th of September एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। उससे भी अच्छी बात यह है कि भैया इस वक्त चल रहा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, एंड इतना समझ जाए कि यह अर्ली बर्ड ऑफर सिर्फ वन टाइम ही रिलीज हो रहा है, बंद होने के बाद दोबारा इवेंट डेट तक ये वापस नहीं आएगा, जहां पर इस वक्त आप अवेल कर सकते हैं 20% ऑफ ऑन ऑल कैटेगरीज। एंड एक बात और है, अगर आप दो टिकट्स एक साथ बुक करना चाहते हैं तो एक और स्पेशल ऑफर है, 160 रियाल्स में सिर्फ आपको दो टिकट्स मिल रही हैं। जाइए फटाफट से टिकट्स बुक करके आइए। यार ये वही कलाकार वही सितारे जिन्हें अक्सर हम टेलीविजन अखबारों में देखकर खुश हुआ करते हैं, हमने सीधा आपके सामने निलाकर खड़ा किया, तो क्यों ना मुलाकात जो है वो कर ली जाए। भैया कहर होगा इनका सॉलिड गुरु रंधावा की आवाज की तरह। एंजॉय बंदी का नाम अंशु।
2: I'm

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल पे चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह,

Well, Jubin Nautiyal and Tulsi Kumar ki khubsurat si awaaz and what a lovely track it is. वैसे आपके मिलने के बाद ना मैं जो हूँ हर दिन मुस्कुराने ही लगती हूँ. जैसे मुझे पता है ये मेरी आवाज जब आपके कानों तक पहुँचती है तो ऑर्गेनिकली एक खूबसूरत सी मुस्कान जो है आपके चेहरे पे आ ही जाती है. अगर ऐसा है तो बताना जरूर. मिर्ची अंशु वैसे अगर मुस्कान की बात करूं तो एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में ये काम जो है ना और भी खूबसूरत और अच्छी तरह से बस होने ही वाला है. वाल अंशु एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी है एंड अगर आज की तारीख को देखने की कोशिश करें तो भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये 6th August पे हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं. कुल मिलाकर एक बार फिर से वीकेंड ने हमारी ज़िंदगी में दस्तक दे ही दी है. थर्सडे का दिन आ चुका है एंड अगले दो दिन अगर लाइफ में कुछ करना है तो वो है ढेर सारा आराम. एब्सोल्युटली मेरा तो फंडा बड़ा क्लियर होता है यार. मतलब यूजुअली इवेंट्स के चलते सारे काम के चलते इतना ज़्यादा वो सोशल लाइफ हो जाती है ना. ऐसा लगता है वीकेंड जब आया तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मुझे सोशल होना है. लेकिन हाँ, सोशल मीडिया से दूर अपने घर वालों के साथ सोशल होना है. चलिए जी, वीकेंड में क्या करें क्या ना करें ये कैसे मुश्किल है. तो चलिए एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि कतर के बहुत सारे मॉल्स में इस वक्त अगर कुछ चल रहा है तो वो है शॉपिंग फेस्टिवल एंड शॉपिंग फेस्टिवल के चलते बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स आपकी ज़िंदगी में शामिल है. तो भैया व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. इंडोर्स अगर कुछ अच्छा करना है तो मैं तो कहती हूँ मॉल्स ही निकल जाओ. इतने बड़े बड़े मॉल्स आखिरकार बनाए किस लिए गए ना, सब देखने के लिए थोड़ी ना, घूमने फिरने के लिए. जाओ यार जरा शॉपिंग वॉपिंग करके आओ, अच्छा खाना वाना खा के आओ एंड उसके बाद अगर लगे कुछ एडिशनल करना है तो उसका प्लान भी आपका बनवाएंगे आपसे कुछ देर में. टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट. एंड अच्छा वो स्माइल वाली बात अगर सच है कि मेरी बात मेरी आवाज़ सुनकर आपके चेहरे पर स्माइल आती है तो फटाफट से मुझे एक थैंक यू मैसेज इस वक्त मिल जाना चाहिए. 5000 1896 I'm eagerly waiting for your messages. Instagram मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु. Meanwhile, श्रीनिवास की आवाज़ एंड ये अगला बेहद प्यारा सा गाना. Enjoy. बंदी का नाम अंशु.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of?
4: Possible.
3: Kaasam mein Sanjay Dutt ne kis cheez ki gaadi lagayi thi?
5: Paobhaji.
3: Shabash. Don ko kitne mulk ki police pakadna chahti hai?
4: 11.
3: Goli maar bheje mein bheja?
5: Chor karta hai.
3: Shabash. लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से
5: गांधीयन
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया
5: पीके मेनन
3: खत्म
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता आदमी का नाम राजकुमार राव रेडियो स्टेशन का मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट 4 बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
9: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
7: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: Well, विशाल शिखर की पावर पैक आवाज शिल्पा राव का साथ है। यस, एब्सोल्युटली, इस गाने को सुनने के बाद इस गाने से इश्क जैसा कुछ होने ही लगता है। चलिए जी, ये खूबसूरत सा प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन आपकी वीकेंड डायरीज को सेट करने की कोशिश उस वक्त मैं कर रही हूँ, तो अगला ठौर ठिकाना आप तक पहुँचा ही दिया जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, कदर की ना सबसे खास बात यही है कि चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का ऐसा जरिया हमारी जिंदगी में शामिल हो ही जाता है जो हमें बता देता है कि वीकेंड में करना है तो क्या ही करना है। देखिए यार, फिर से मैं एक बात बताना चाहूंगी, आपने शायद पहले सुना होगा लेकिन अगर भूल गए तो याद रखें कि अगर हम डेट्स एग्जीबिशन की बात करें, लोकल डेट्स एग्जीबिशन की बात करें, तो अब तक के सबसे बड़े एडिशन के साथ ये चल रहा है सुख वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में। प्रोसेस्ड डेट्स जो है, बहुत सारी वराइटीज के डेट्स जो है वो तो हमें आए दिन कतर में अक्सर मिल ही जाते हैं यार, लेकिन लोकल वो फ्रेश डेट्स खाने का मजा जो है ना, हल्का सा कच्चा, हल्का सा पका हुआ, एंड वो हल्की सी मिठास, हल्की सी कुछ खराश, हाय क्या गजब का टेस्ट होता है। आई बेसिकली लव दोज रेड डेट्स, मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड अगर आपको लगता है कि आपके ख्याल मेरे ख्याल से पूरी तरह से मिलते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से सुख वाकिफ ईस्टर्न स्क्वायर, ओनली अंटिल 10th ऑफ ऑगस्ट पहुंच जाना है। पूरा एसी टेंट है, बिल्कुल भी गर्मी जो है नहीं लगने वाली, इनफैक्ट ठंडी का एहसास जरूर होगा, तो हो सके तो फुल स्लीव्स के कपड़े जो है ना वो जरूर पहन के जाना। एंड यहाँ पे पता है और भी अच्छी बात क्या है, खजूर तो मिलते हैं लेकिन खजूर से बने हुए बहुत सारी डेलिकेसीज भी हैं। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ना कुनाफे में खजूर खाया भाई, मतलब कुनाफे की बहुत सारी वैरायटीज खाई हैं लेकिन डेट्स के साथ आई हैपन टू ट्राई इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। गो हैव फन, एंजॉय, एंड उसके बाद एक्सपीरियंस कैसा लगा ये बात जो है ना मुझे जरूर बताना। 5000 1896 आई लुक फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग विद यू देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, मीनवाइल एक काम करें, आपको अगले गाने की तरफ ले जाए, एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

रितु सिंह एंड श्रेया घोषाल की खूबसूरत सी आवाज़ और वाला पावर पैक ट्रैक इट इज वीकेंड मूड ऑन होते ही अगर आप ये गाना ना सुने तो फिर क्या ही सुने। मिर्ची अंशु हेलो जी, वीकेंड जो है हमारी जिंदगी में सॉलिड तरह से दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर लग रहा है कि इस वीकेंड करना है तो क्या ही करना है, तो एक जेंटल रिमाइंडर के तौर पे फिर से ये पैगाम, ये मैसेज मैं आप तक पहुंचा दूं कि सबसे जरूरी एंड सबसे इम्पोर्टेंट काम बस यही करना है। देखो यार, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, कुछ इवेंट्स आपको इंस्पायर या मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में ना ये सारा कॉम्बिनेशन एक साथ लेकर आते हैं। एंड बहुत सारे ग्रैंड मेजर मेगा इवेंट्स होस्ट करने के बाद, आपको एंटरटेन करने के बाद, मिर्ची एक बार फिर से ऐसा कोई एक्सपीरियंस लेकर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है विथ सुहानी शाह लाइव इन दोहा। Well, this is happening for the first time in the history of Qatar. एक ऐसा इवेंट जो आपको मैजिकल एक्सपीरियंस देगा, जो मेंटलिस्ट के दिमाग को समझने की शक्ति देगा। इल्यूशन किसे कहते हैं, इस गली भी आपको जरूर लेकर जाएगा। एंटरटेनमेंट की भरमार होगी, बहुत कुछ सीखने सोचने समझने को मिलेगा। ना आपकी मुलाकात ना खुद से होगी। सो यार, फटाफट से एक ही काम करना है, 25th of September कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये जो इवेंट हो रहा है, जो मिर्ची की पेशकश है, उसकी टिकट्स जल्दी से बुक करनी है, क्योंकि इस वक्त चल रहा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, अर्ली बर्ड ऑफर। एंड बिलीव मी, यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 20%। एंड सबसे खास बात, ये डिस्काउंट, ये ऑफर सिर्फ अभी ही है। अगर आपको लगे ना यार इवेंट करीब आएगा, जरा देखना कि किस तरह से ऑफर्स बढ़ेंगे, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, माइंड यू। एंड साथ ही अगर आप दो टिकट्स बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और स्पेशल ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ 160 रियाल्स में आपको दो टिकट्स मिल रही हैं। सो जाइए फटाफट से अपनी टिकट्स जो है बुक करके आइए, एंड इस मैजिकल एक्सपीरियंस के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga.
1: Na vietva la murga. Milci, murga. हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार।
1: Hello?
2: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अबे गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने Hello? माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या आप पागल है क्या?
2: पागल आप है, पागल आप
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
2: आज के बाद घर से आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
7: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The Mentalist Suhani Shah. Live.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: What a lovely track it is, यार। सच कह रही हूँ, मतलब इन दिनों जब भी मैं प्लेबैक सिंगिंग में खासकर अरिजीत सिंह की आवाज़ सुन रही हूँ ना, तो वो फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार अभी अरिजीत हमारे पास हैं। जैसे कि उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि अब से कुछ महीनों के बाद वो जो है प्लेबैक सिंगिंग से अलविदा कहने वाले हैं। भाई सिनेमा अरिजीत के बगैर नहीं यार, सोचना भी मुश्किल है। सीधा थिंग इज, ये बात तो तय है कि जिंदगी जो है कभी भी किसी के बगैर रुकती नहीं है। कोई काम जो है किसी के बगैर नहीं रुकता। अगर कोई एम्प्लॉय ये सोचे कि मैं जो हूँ अपने ब्रांड के लिए रिप्लेसेबल, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। माना कि कई बार किसी के जाने से कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, लेकिन हाँ जिंदगी फिर भी चलती रहती है ना। जब किसी शख्स के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती, तो फिर तो ये तो काम है, ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है, जगत है। लेकिन बात इतनी है कि कुछ लोग अपने अच्छे काम से इस तरह का इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं कि उनके जाने के बाद ना कहीं कमी रह जाती है, कुछ खालीपन सा ज़रूर रहता है। तो अरिजीत सिंह की अगर आवाज़ को देखने की कोशिश करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इन्होंने इतना सुनहरा एक्सपीरियंस दिया है भाई, कि अगर आज की डेट में आप फिल्मों को उनके बिना इमेजिन या कल्पना करने की कोशिश करें ना, तो थोड़ा टफ जो है वो ज़रूर है। लेकिन पता है, इस बात से मुझे अपने पापा की एक बात याद आती है। पता है मेरे पापा अक्सर एक बात कहा करते थे कि चाहे तुम किसी से भी मिलो, वो कुछ लम्हे के लिए हो या उम्र भर का साथ हो, या तुम कोई भी काम करो वो एक पल के लिए हो या तुम्हारा करियर प्रोफेशन हो, यार जो भी करो ना पूरे दिल से करो, इन सच्चाई एंड ईमानदारी के साथ करो। अक्सर ना हमारा एक नेचर होता है कि हम कोई भी काम इसलिए करते हैं क्योंकि करना है। अच्छा ठीक है ना यार, ऐसे जगह पे रखना है, बस इसलिए रखना है क्योंकि करना है। नहीं यार, कितने किस्मत वाले वो लोग होते हैं पता है, जिन्हें एक रिश्ते में शामिल होने का मौका मिलता है। ऐसे कई उन महरूम लोगों से पूछ के देखो जिन्हें एक रिश्ते की ज़िंदगी में दरख्वास्त है, वो एक ख़ास रिश्ता उनकी लाइफ में नहीं है जो तुम्हारी ज़िंदगी में है। साथ ही ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उस काम की दरकार है जिस काम पर तुम हो आज। लगता होगा प्रेशर है, कंसिडर नहीं होता, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जब किसी ऐसे शख्स की दास्तान सुनने की कोशिश करोगे ना, जो बस तुम्हारे पोजीशन पे आने के लिए एक न जाने कितनी मन्नतें कर रहा है, तब लगेगा कि ज़िंदगी कितनी ब्लेस्ड है यार। इसलिए कम पसंद है, ज़्यादा पसंद है, जो भी है, रिश्ता निभाओ, पूरे दिल से निभाओ, कोई काम करो दिल से करो, और उसके बाद देखो अपने आप वो चीज़ तुमसे इश्क कैसे करने लगती है, तुम्हें उस काम से प्यार हो ही जाएगा। चलिए जी, बात अच्छी लगी, थैंक यू मैसेज भेजना। 5000 1896, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम, मिर्ची 1 कतरिया, मिर्ची अंशु। मीनवाइल एक काम करें, आपको अगले गाने की ओर जो है हम लेकर चले, भाई साहब मजा आएगा आपको, एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।

0: एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
2: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
3: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की खूबसूरत सी आवाज केएस चित्रा का साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. क्या खूबसूरत सा गाना है यार. चलिए प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन आपसे ये खास बात भी हो जाए. मिर्ची अंशु पता है क्या, मुझे ना हमेशा से लाइफ में कुछ खास इंटरेस्ट रहा है. मतलब लाइफ के हर एक फेज में ना किसी चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है. लाइक जब मैं स्कूल या कॉलेज टाइम्स में हुआ करती थी तो पढ़ाई तो नेचुरली करनी पड़ती थी एंड पढ़ाई में मैं थोड़ी अच्छी थी, लेकिन पढ़ाई के अलावा मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितनी क्रिएटिव हो सकूँ ना मैं उतनी क्रिएटिव बनूँ. मुझे आर्टिस्टिक वर्क में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ करता था. मैं कभी पेंटिंग सीखा करती थी, कभी ड्राइंग स्केचिंग क्लासेस जाया करती थी, यू नो वो पॉट डिज़ाइनिंग भी मैंने बहुत कुछ किए. एंड उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हुए मैंने ऑफिस में काम करना शुरू किया. इंडिया में बैक देन मैं L&T में काम किया करती थी. उस वक्त ऐसा लगता था ठीक है यार ऑफिस का काम तो चल रहा है, लेकिन मुझे इसके अलावा अपनी स्किल्स एनहांस करनी है. तो तब मैंने ज्वाइन की कम्युनिकेशन क्लासेस, पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस. एंड क्या मज़ा आता था यार. मतलब जितना सीखने में मज़ा आता था उससे ज़्यादा अच्छा लगता था औरों को बोलते हुए सुनना. फिर लाइफ जो है आगे बढ़ी, मैं कतर आई यहाँ आने के बाद, फिर बहुत सारे कामों में मैं लगी. लेकिन काम के अलावा ना हमेशा फिर से दिल में एक ख्वाहिश होती थी कि कुछ और करते रहना है. अब जब मैं आज इस बात को एनालाइज करती हूँ एंड सोचती हूँ कि ये आखिरकार क्यों होता था एंड ये चीज़ मुझे खुशी क्यों देती है, तब मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट पे जब मैं ऑफिस के काम पे होती हूँ या जब मैं अपने इवेंट्स होस्ट करती हूँ तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, यू नो, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती हूँ. लेकिन आज की डेट में जब मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ एंड मुझे बहुत जुनून है तो ऐसा लगता है दैट इज़ बेसिकली मी टाइम. ये वो वक्त होता है जब मैं सारी दुनिया की जिम्मेदारियों से दूर, अपने काम से दूर, कुछ वक्त सिर्फ अपने इंटरेस्ट, अपने मज़े अपने लिए बिताती हूँ. यार पता है जब कभी लगे ना कि लाइफ काफ़ी मोनोटोनस हो रही है या कुछ मोनोटनी ने आपकी ज़िंदगी को घेर लिया है, एक बात कहना चाहूँगी, कोई एक ऐसा एडिशनल इंटरेस्ट अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना जहाँ पे तुम्हारे घर वाले ना हो. नो एंड आई मीन इट, जहाँ पे ऑफिस के कोलीग्स ना हो. एंड वो जो वक्त है ना, चाहे तुम स्ट्रेंजर्स के साथ एक एब्सोल्युटली ऐसे ग्रुप के साथ बताओ जिससे तुम्हारा रूटीन लाइफ में लेना देना नहीं है, एंड कोई ऐसा काम करो जिसका तुम्हारे घर या तुम्हारे काम से कोई वास्ता नहीं है, बिलीव मी मज़ा आएगा एंड बहुत मज़ा आएगा. एंड इसके बाद तुम घर पे अपने रिश्ते ज़्यादा अच्छे से निभाओगे, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से पूरी करोगे एंड ऑफिस के काम में भी ना दिल ज़्यादा लगेगा. तय है बस. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
3: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट, व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
2: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

शमाली खुल गई मनाली ठाकुर की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ पावर पैक गाना इट इज। यार कुछ गाने जो होते हैं ना आपकी जिंदगी में प्रॉपर किक देने का काम करते हैं, सच कह रही हूँ, ये गाना जो है वो जरूर है। एंड मोर सो इट इज लाइक अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि कुछ अचानक से आप ऐसा सुनो जो काफी अरसों के बाद सुन रहे हो एंड उस गाने से आप कनेक्ट कर पाओ कि हाँ यार ये तो मैं कभी सुना करता था, तो जरा सोचो वो एक्सपीरियंस होता है और कितना कमाल एंड गजब होता है। एंड इस वक्त ये जो आगा भाई गाना मैंने सुना, भाई लगा हाय ये तो मुझे मेरे कॉलेज टाइम पे लगे गया, इस गाने में मैंने नाचा है, सॉलिड नाचा है। चलिए जी, नाचने की बात करूँ, दिल को नचाने की बात करूँ, एक अलग एक्सपीरियंस देने की बात करूँ, आपके माइंड को पूरी तरह से रीसेट करने की बात करूँ, तो ये सारे काम की बारी जो है ना वो आ चुकी है। यार पता है बचपन से ना मुझे ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था जब मैं किसी मजिशियन को कोई एक्ट या स्किल परफॉर्म करते हुए देखती थी, लगता था यार ये कैसे करते हैं। एंड वो बचपन की छोटी नादान अंशु कभी कभी ये सोचा करती थी क्या इस मजिशियन के पास ये भी पावर होगा, ये भी हुनर होगा कि मेरे सामने ना वो क्वेश्चन पेपर ला के रख दे जो मेरे टीचर ने सेट की हुई है। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन जस्ट ग्रेट सिक्स जब हमारे स्कूल में एक मजिशियन आए थे एंड बहुत पॉपुलर सा उनका शो था, काफ़ी अच्छे लेवल के थे। एंड व्हेन आई सॉ हिम परफॉर्मिंग आई वाज सो इंप्रेस्ड एंड सो मेसमराइज्ड। जब वो जा रहे थे चुपचाप में उनसे मिलने गए थे, बस यही पूछा था कि अगले महीने ना हमारे एग्जाम्स है, क्या बस वो एनुअल एग्जाम का मुझे पेपर ला कर दे सकते हैं, क्वेश्चन पेपर। एंड हाउ इनोसेंटली ही रिस्पॉन्डेड कि उसके क्वेश्चन पेपर की जरूरत ही क्या है तुम्हें, तुम्हें तो ऑलरेडी पूरे आंसर्स आते हैं, बस तुम कोशिश करो और देखो जो तुम चाहती हो वही क्वेश्चंस एज इट इज आ जाएंगे। क्या यार क्या वो दिन थे। चलिए जी, लेकिन कोई जो है इस वक्त कतर आ रही है जो जेन्युइनली आपके दिमाग के सारे खानों को खोलने वाली है, सारे आपके पुर्जे जो है वो चित करने वाली है, बस यही सोचने में मजबूर करेंगी ये हुआ तो हुआ कैसे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह। सुहानी शाह लाइव इन दो इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन 25th ऑफ सितंबर एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। येट अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट, रिमाइंड यू टाइम एंड अगेन, अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज ऑन गोइंग एट द मोमेंट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से स्नोनू का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, स्नोनू सिटी पर जाएं एंड अपनी टिकट्स जो है जल्दी से बुक करके आए। 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इनफैक्ट इस वक्त एक स्पेशल ऑफर भी है जहां पर 160 रियाल्स में आप दो टिकट बुक कर सकते हैं। गो एंड सिक्योर योर टिकट्स राइट अवे। मीनवाइल नेहा कक्कड़ तुलसी कुमार की आवाज में अगला प्यारा सा गाना एंजॉय हबीबी राइट हियर फॉर यू। बंदी का नाम अंशु।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: जी टंडन परम्परा टंडन की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ यार, क्या खूबसूरत सा गाना भाई। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे चाहने वाला तुम्हारे साथ है तो जरा सोचो जिंदगी में उससे ज्यादा चाहिए तो क्या ही चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे इस वक्त उस चाहने वाले को खुश रखने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अरे सब इश्क प्यार मोहब्बत से जिंदगी चलने लगती गुरु, तो बात ही क्या थी भैया। अच्छा रोटी कपड़ा मकान सब कुछ चाहिए या नहीं, ये खुशियां जो है और बढ़ जाती हैं जब पता चल जाए कि एक्सचेंज रेट में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। बॉस करे ना करे लेकिन ऑर्गेनिकली जिंदगी में बढ़ोतरी जो है वो हो ही गई। जरा देखिए आज का पैसा क्या ही कहता है। वेल अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 26.08, साथ ही पाकिस्तानी रुपीस 76.22, नेपाली रुपीस 41.65, लंकन रुपीस मचाते हुए बजाते हुए डंका 92.08 एंड बांग्लादेशी टाका 33.97। हाँ जी, घर भेजे पैसे ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।
1: Best actions reads भेजो खुशियाँ और पैसे दोनों ही घर पे।
2: मिर्ची फ्रेश माल।
3: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं
2: चाहिए
1: इसको, यूरिन की कमी हो गई है। आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना
1: है। मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब चढ़ाऊं?
1: आपका ग्रुप मिल
2: गया सर, इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी जी।
1: हाँ यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: ए पगला
5: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, 2 लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोरस्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

0: सुनने को भी ये खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार, क्या प्यारा सा गाना है। लेकिन सच कह रही हूँ, ये गाना सुन के ना मुझे कुछ तो याद है जरूर आया।
1: मिर्ची अंशु
0: Well, कुछ बातें जो होती है ना आपको सीधा अगर कहीं लेकर जाती हैं तो वो है आपके स्कूल एंड कॉलेज टाइम्स पे। एंड जैसे ही मैंने ये गाना सुना, कहीं ना कहीं दिल जो है ना स्ट्रेट अगर मुझे कहीं लेकर दिया भाई, वो स्कूल टाइम का वो गाना, वो स्कूल टाइम का वो क्रश फाइनली ये गाना रिवील हुआ। एंड उसके बाद ये गाने के बाद हम ना फीलिंग्स को और भी ज़्यादा महसूस करने लगते थे। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर होता है कि गाने जो हैं मेरी फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर मैं ऐसी सैड हूँ, मैं उदास हूँ भाई, अगर आपको लगता है ना मुझे हार्ट ब्रेक का मरीज बनाने, तो फाइनली ना मुझे बी प्राक के कोई गाने जो है आप सुना दें। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइफ में इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की ज़रूरत है, उस वक्त आप एक काम करें, मुझे सीधा आप ऐसा कोई गाना सुनाएं जो आपको पीक पे लेके जाता है। देखो मेरी एनर्जी जो है ना दुगनी कैसी होती है। स्पेसिफिकली मुझे कुछ कहना है इस फिल्म की मैं बात करूँ जो कि रिलीज हुई थी साल 2001 में। एंड इस गाने पे अगर आपको कोई नजर आए थे तो वो है तुषार कपूर एंड करीना कपूर। भाई किसी ने इमेजिन किया था कि ये डुओ, ये पैर अच्छा भी लग सकता है। वैसे ये फिल्म जो है काफ़ी चली थी ना, अच्छी चली थी। एंड हमने ना इस गाने पे स्कूल टाइम पे परफॉर्म किया था। आई स्टिल रिमेंबर टीचर्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा था एंड वी सेलेक्टेड दिस ट्रैक एंड क्या धमाकेदार हमने परफॉर्मेंस किया था। स्टेज लिटरली बीच से ब्रेक हुआ था। नहीं, हमारा डांस इतना धमाकेदार नहीं था, स्टेज का जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया गया था ना वो इतना ख़राब किया गया था। सो इस गाने से मेरी ये मेमोरी रिलेटेड है। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई गाना है जो आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि आप सीधा अपने स्कूल या कॉलेज टाइम ट्रांसपोर्ट हो ही जाते हैं? 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल अखिल सचदेव एंड मनशील गुजराल की आवाज में अगला प्यारा सा गाना आप तक पहुंचाते हैं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

विशाल की खूबसूरत सी आवाज, विशाल डिडलानी का साथ, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर। एंड भाई क्या ही बोलूं, वैसे राधा ये नाम सुनते हुए ना इमिजिएटली मेरे जहन में कोई तो थॉट आया। मिर्ची अंशु। यार आप में से जितने लोग मुझे रोज़ सुनते हैं आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर मेरा सबसे फेवरेट काम कुछ है तो वो है नॉस्टैल्जिया में आए दिन डाइव इन करते रहना, मतलब पुरानी बातों को फिर से दोहराना, उन्हें जीने की कोशिश करना। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आज को इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी तरह से जियो कि कल के दिन जब ये तुम्हारा कल बने और उन यादों को आप फिर से जीने की कोशिश करो ना तो आपकी मेमोरीज जो हैं वो काफ़ी कलरफुल एंड काफ़ी खूबसूरत नज़र आए। चलिए तो अगर मैं अपनी मेमोरीज़ की बात करूँ तो राधा नाम से ना मुझे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन याद आता है। मतलब स्कूल में जब भी फैंसी ड्रेस हुआ करता था, वी एस किड्स सबसे ज़्यादा अगर किसी किरदार में खुद को देखते थे तो कोई राधा बनकर आता था ना, कोई फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी बनकर आता था, कोई जवाहरलाल नेहरू बनकर आता था। एंड क्या ग्लोरियस कलरफुल वो डेज हुआ करते थे यार। एंड उन छोटे छोटे बच्चों में हम बींग द किड्स अपनी खुशी तो अलग देख ही लेते थे, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि मुझे फाइनली मम्मी का ना वो मेकअप किट यूज़ करने को मिलेगा। यूजुअल नॉर्मल डेज में तो मम्मी कभी अपना मेकअप यूज़ करने देती नहीं थी, एंड फाइनली हम जब अच्छे से रेडी होंगे, वो प्यारी सी ड्रेस पहनेंगे तो वो मेकअप किट जो है ना हमारी ज़िंदगी में शामिल होगा। क्या दिन थे यार। आज की डेट में अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करें तो हम सब कहीं ना कहीं इस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ना कपड़े नहीं बदलते, हम अपने किरदार बदलते हैं। न जाने कितने मुखौटे, न जाने कितने चेहरे लोगों के हैं ना। सोशल मीडिया में हम जिस तरह की अपनी तस्वीरें डालते हैं, जिस तरह से खुद को पेश करते हैं, एक अलग सा चेहरा। घर पे जो होते हैं काफ़ी अलग, ऑफिस में जो होते हैं और भी ज़्यादा अलग। लेकिन पता है इस बात में मुझे एक बात लगती है, ज़रूरी है कि आपका अपीयरेंस, आपका अटायर, आपका आउटफिट, आपका जो लुक है वो हर जगह अलग हो, लेकिन वो जो अंदर का इंसान है ना यार, जो तुम्हारे अंदर सही मायने में बसता है, जो तुम्हारी ओरिजिनलिटी है, चाहे कहीं पर भी जाओ यार, उसे हमेशा एक रखना। क्योंकि ज़िंदगी रंग तब बदलती है जब तुम्हारे अंदर के 10 रंग होते हैं। बाहर के रंग से फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर का रंग हमेशा वो एक सच्चा, पाक और नेक हो, ये बात ध्यान रखना। श्रेया घोषाल की आवाज़ जुबिन नौटियाल का साथ है, नहीं अगला गाना एन्जॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood Bollywood Boulder
1: Only on Mirchi It's Hot
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है। अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे। तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क। हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी।
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है। इट इज वेरी इजी टू ट्रोल, बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Boulder
1: Only on Mirchi It's Hot
4: It's all down to Dhoni isn't it Four balls left they need 12 runs to win
5: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala lekin use pata hai Salman Khan abhi apne farm house mein horse riding ke bare mein soch rahe hain
6: Yeah, are you thinking of like a flying carpet? Are you thinking of flying carpet?
7: Yes. Kaise kiya seriously? Kaise kiya ye?
5: Use sab pata hai. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: What Shri Ram Chandra ki khubsurat si awaaz Shilpa Rao ka saath, and what a lovely track it is from the film Ye Jawani Hai Diwani. Hai, dil ko chhu liya is gaane ne bhi aur is film ne bhi.
1: Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu.
0: यार पता है, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में ना कई किरदार कई बार ऐसे होते हैं जिनसे जेन्युइनली आप खुद कनेक्ट कर पाते हैं. अगर मैं ये जवानी है दीवानी फिल्म की बात करूं, एंड इसमें अगर मैं दो किरदारों को देखूं, चाहे मैं बनी की बात करूं या मैं नैना की बात करूं, ये दोनों किरदार ऐसे हैं जिनसे मैं खुद को ज़रूर रिलेट कर पाती हूं. यार बनी की तरह ना मैं एक्सट्रीमली पैशनेट हूँ, अपने करियर को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हूँ. जितने लोग मुझे रेगुलरली सुनते हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आरजे, आई एम आल्सो अ शो प्रेजेंटर एंड एमसी, एंड एज एन एमसी आई गेट टू ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब फॉर माय शोज एंड इवेंट्स, बिकॉज आई डू शोज नॉट जस्ट हियर इन कतर बट ऑल अक्रॉस. इनफैक्ट इस वीकेंड मैं चेन्नई जाने वाली हूँ. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा इवेंट है जो मैं होस्ट कर रही हूँ, विच इज़ बेसिकली फॉर द इवेंट्स इंडस्ट्री. एंड अगर आपको उसके अपडेट्स देखने हैं तो बिल्कुल मिर्ची अंशु आप मुझे इंस्टाग्राम पर देखिएगा, आपको सारे अपडेट्स अगले दो दिन के मिलेंगे. लेकिन पता है बात क्या है, जहाँ पे एक तरफ मुझे अपने करियर को लेकर एम्बिशियस होना पसंद है, वहीं दूसरी ओर ना मुझे नैना की तरह अपने घर वालों के बीच रहना भी बहुत पसंद है. यार ऐसा लगता है कि जितने लम्हे जितने पल मैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह से बिता पाऊँ, उन लम्हों को बटोर सकूँ, मैं वो भी करूँ. एंड इन दोनों ही कैरेक्टर्स में बैलेंस बिठा पाना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन ज़िंदगी शायद इसी का तो नाम है, बैलेंस का, जहाँ आप अपने सपने भी साकार कर सकें. एंड जो लोग आपके सपनों में आपके साथ शरीक और शामिल होते हैं ना, आप उनके साथ भी दिल से ज़िंदगी जी सकें. तो बस बैलेंस को आगे बढ़ाते हुए वीकेंड में सॉलिड बैलेंस करना है मुझे, अपने इवेंट का, अपने ट्रैवल का, अपने काम का, एंड घर वालों के साथ वक्त बिताने का भी. तो ये सारा काम तो मैं करूँगी, लेकिन अभी के लिए कहती हूँ अलविदा. मुलाकात होगी अब सैटरडे को बेस्ट ऑफ द वीक के साथ. संडे को फिर से करेंगे एक नई शुरुआत. यू ऑल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. मा सलामा हबीबी. बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: बचपन में ना जहाँ कहीं मुझे ट्विन्स के बारे में पता लगता था कि वो मेरे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, आई यूज्ड टू बी रियली एक्साइटेड टू सी देम।
1: सारा ज़माना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. Yes, the concept of twins ना, it used to be very, very new for me. क्योंकि इतने आम तरीके से हमें twins देखने को नहीं मिलते थे ना. हमें जो देखने को मिलता था 90s की movies में, that was डबल रोल। ट्विन्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था हमको, हमको बस ये पता था कि एक बंदा एक दुनिया में जी रहा है और एक बंदा दूसरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन दोनों की शक्लें एकदम सेम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, ट्विन्स भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शक्लें एक दूसरे की जैसी बिल्कुल डिटो कट कॉपी पेस्ट है। तभी तो 90s के बॉलीवुड ने ऐसे थोड़ी ना दिल में घर कर लिया था, जहां हमें डबल रोल का कॉन्सेप्ट पहले पता लगा और ट्विन्स का कॉन्सेप्ट बाद में पता लगा बॉस। तो चलो फिर आज ना मैंने सोचा है कि मिड डे मोहब्बत में बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जहां पर डबल रोल देखने को मिले थे। और बॉलीवुड में ये कोई बड़ी बात थी कि 90s के दौर में हमें डबल रोल देखने को ना मिले किसी फिल्म में, हर दूसरी तीसरी फिल्म में डबल रोल हुआ ही करता था बॉस। तो आज कौन कौन सी फिल्में आर ऑन द लाइन आपको पता लगेगा इन अ वाइल, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कह देती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे। बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए, एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या? ये
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं।
1: क्या कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
0: नहीं,
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है। अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसको चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए?
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
0: अच्छा, कुकड़ू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटा।
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स, है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah live.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: दो जुड़वा बहनें, जिनमें से एक बिल्कुल सीधी सादी और दूसरी एकदम तेज दरार। एक जो थी वो महलों में रहती थी लेकिन ऐश नहीं करती थी। दूसरी जो थी वो बस्ती में रहती थी लेकिन आराम से ऐश करती हुई रहती थी। और ये जो फिल्म है ये है लाइन में लगी हुई, बिकॉज आज डिस्कस होने वाले हैं बॉलीवुड के डबल रोल्स।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the movie that I'm talking about is चालबाज। ये वो चालबाज है which was most talked about in the 90s। श्रीदेवी ने क्या काम किया ना, and as a double role वाला character, उन्होंने और ही धमाकेदार काम किया। मतलब श्रीदेवी में भी एक पर एक मुफ्त। बट यू नो, इस मूवी के पीछे एक बड़ी बढ़िया सी कहानी है और वो कहानी बोनी कपूर से रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम बोनी कपूर और श्रीदेवी का कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम अनिल कपूर और बोनी कपूर, इन दोनों ही लोगों को जब पता लगा कि चालबाज सनी देओल के साथ अनाउंस हो गई है, तो ये दोनों पहुंचे सीधे फिल्म मेकर्स के पास। अब हुआ ये था कि ये वो दौर था जब बोनी कपूर और अनिल कपूर फॉर सर्टन रीजंस बिल्कुल फिल्में नहीं ले रहे थे। उन्होंने जितना भी साइनिंग अमाउंट अगर किसी फिल्म का लिया भी था ना, वो भी वापस दे दिया। लेकिन इसी दौरान जब इन्हें चालबाज के बारे में पता लगा, तो ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचे कि यार अनिल कपूर को साइन कर लो इस फिल्म के लिए और सनी देओल को बाहर कर लो। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, सनी देओल ने इतनी अच्छी और हिट फिल्म दी है पाप की दुनिया, उसी के बाद तो हमने सनी देओल को इस फिल्म के लिए लिया है। लेकिन अनिल और बोनी कपूर तो अपने प्राइसेस भी कम करने के लिए तैयार हो गए, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो टेम्प्ट हो जाए कि सनी देओल को बाहर कर दें और अनिल कपूर को इन। फिर भी प्रोड्यूसर नहीं माने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सनी देओल को ही रखेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के साथ तो 3 फिल्म्स का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। सो ही हैड नो इंटेंशन ऑफ ड्रॉपिंग हिम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ अनिल कपूर, जिनको लगा था कि ये फिल्म उनके हाथ में आएगी, वो आई नहीं। एक तरफ अनिल कपूर और बोनी कपूर इस बात को लेकर सैड हो गए थे और दूसरी तरफ इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पारशर वाज आल्सो सैड वंस अपॉन अ डे ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म। हुआ ये था कि वो जो रोहिणी हतंगड़ी जी के साथ सीन नहीं था श्रीदेवी का, जहां पर वो रोहिणी जी के चेहरे को एकदम पोत देती है बुरी तरीके से, वेल उस सीन के टाइम पर द डायरेक्टर पंकज पारशर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द मेकअप जो रोहिणी जी का किया गया था। वो मेकअप वैसा लग ही नहीं रहा था जैसा लगना चाहिए था। तो हुआ ये कि श्रीदेवी ने खुद डिसाइड किया कि वो अपना मेकअप किट लाएंगी और फिर खुद ही रोहिणी जी का फेस जो है उसको पेंट करना शुरू कर देंगी। तो जो हम ये सोच के बैठे थे आज तक कि रोहिणी जी का जो पेंट फेस हुआ हुआ है वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा और श्रीदेवी सिर्फ एक्टिंग करी है उनका मेकअप करने की, तो ना जी, वो मेकअप श्रीदेवी ने ही किया था रोहिणी जी के चेहरे पर। इसे कहते हैं श्योर प्रोफेशनल। और सीता गीता की ये रीमेक हम सबके दिलों में घर कर गई थी, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: कैसे भूलेगी मेरा नाम, कैसे भूलेगी मेरा नाम।

0: मिर्ची स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
2: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल पे चैन।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अच्छा ये बताओ, एक और एक क्या होते हैं? अगर आपकी बॉलीवुड की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 11, और अगर आपकी मैथ की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 2, लेकिन मैं बोलूंगी जुड़वा।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मिडडे मोहब्बत पर आज मेरे यारा हम बात कर रहे हैं 90s की वो फिल्में जहां पर डबल रोल थे, यानी कि एक के साथ एक मुफ्त, और उसमें से एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट इज जुड़वा। मतलब मैंने 2 तो नहीं देखी, लेकिन मैं 1 में इतनी खोई हुई थी ना कि मुझसे 2 देखी नहीं गई। एक्चुअली बात ही थी, मगर यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जुड़वा में सलमान खान ना होते तो क्या होता। मुझे ये फिल्म शायद इतनी पसंद भी नहीं आती। आई वॉज अ डाई हार्ड सलमान खान फैन एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअली ये फिल्म सलमान खान करने भी नहीं वाले थे, ये फिल्म तो गोविंदा करने वाले थे। एंड ही वॉज डूइंग दिस फिल्म विद द फिल्म मेकर जिनका नाम था नंदू तोलानी, एंड डेविड धवन वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स। लेकिन सलमान खान को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने गोविंदा से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू मी एंड साजिद नादियाडवाला। गोविंदा ने हाँ कर दी, एंड दिस इज हाउ सलमान एंडेड अप डूइंग जुड़वा। हालांकि डेविड धवन जो थे उनको बड़ा डाउट हुआ करता था कि सलमान इस तरीके की फिल्म पुल आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी की जरूरत थी यार, और बेतहाशा कॉमेडी की जरूरत थी, वो भी डबल रोल के साथ। ये सलमान खान का पहला डबल रोल था यार, तो डेविड धवन थोड़े से नर्वस थे इस चीज को लेकर। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का आउटपुट देखा तो वो खुद हैरान थे कि ये सलमान खान ने क्या कर डाला यार। इनफैक्ट सेट्स पर ये मजाक तो क्रू मेंबर्स भी किया करते थे कि कभी कभी सलमान खान अपने कैरेक्टर राजा की एनर्जी के साथ प्रेम के सीन्स की शूट्स कर लिया करते थे, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स, एक टपोरी स्टाइल राजा और दूसरा मासूम सा प्रेम, इन दोनों ही कैरेक्टर्स का जो शिफ्ट होता था वो बड़ा ट्रिकी हुआ करता था। तो ऐसा भी हुआ करता था। हे बाय द वे, आपको एक अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में रंभा जो सीधे साधे सलमान खान के ऑपोजिट हैं, आपको पता है उनकी आवाज उनकी नहीं है, तबू ने उनकी आवाज इस फिल्म में डब की थी। हाँ जी, कमिंग अप मोर इन्फोज ऑन 90s की डबल रोल वाली फिल्में इन अ व्हाइल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
3: मैं करूँ?
4: आप करोगे?
3: नहीं, मैं करवाता हूँ। मतलब मेरा होता है
4: सर, वो तो पता है। मेरा बस चलता है एक एक को घुसण मार के आती हूँ।
3: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड?
2: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कितने मजे लिए थे ना जब हमने DD1 पे किशन कन्हैया देखी थी, और कितने मजे लिए थे हमने उस बात पर जब चालू वाला अनिल कपूर जो था वो घर के अंदर था और घर वालों की बैंड बजा रहा था। इसीलिए तो सूट बूट में आया था कन्हैया बैंड बजाने को।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, पर्दे के ऊपर जो था वो तो हमने बड़े मजे ले लेकर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो ये था कि अनिल कपूर बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे थे अपने इन दोनों किरदारों को एक साथ निभाने के लिए, बिकॉज इट वॉज हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू कैरेक्टर्स ना, एक किशन जो की इनोसेंट सा बंदा है और एक कन्हैया जो बिल्कुल ही स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है और ऐसी की तैसी कर देता है लोगों को। Well, ये कहा जाता है कि वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस किया करते थे, उठने बैठने के तौर तरीके अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे ताकि वो ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज किशन की है और कौन सी बॉडी लैंग्वेज कन्हैया की है, और ये सब वो हफ्तों हफ्तों तक करते रहे। राकेश रोशन ने लेटर एक किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि किशन कन्हैया की सक्सेस ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से वो और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाए, जैसे कि करण अर्जुन एंड देन इवेंचुअली कहूना प्यार है। एंड हे, बाय द वे, इन दोनों ही फिल्मों में राकेश रोशन ने डबल रोल के कॉन्सेप्ट से ही फिल्म बनाई है। आई थिंक उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि डबल रोल का कॉन्सेप्ट डबल पैसे भी कमा कर दिखाता है बॉक्स ऑफिस पर। और ये बात बिल्कुल गलत भी साबित नहीं हुई। हाँ, करण अर्जुन और कहो ना प्यारे दोनों ही ब्लॉकबस्टर हिट थी, है कि नहीं? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskaba la puskaba na sakaba na. Yabala. Murga, murga. La vizba la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
1: तो
2: नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है,
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: As a काजोल फैन सिर्फ मैं ही नहीं, और भी कई सारे लोग इस फिल्म के लिए बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि ये फिल्म काजोल की शादी के बाद की पहली फिल्म थी, कुछ खट्टी कुछ मीठी।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, और आज मिडडे मोहब्बत पर उन फिल्मों की चर्चा हो रही है जहां पर डबल रोल देखे गए हैं, और उनमें से एक फिल्म थी कुछ खट्टी कुछ मीठी। हालांकि ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ बहुत धमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये फिल्म लोगों को बड़ी पसंद आई है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि काजोल का कैरेक्टर ही ऐसा था यार, इतना क्यूट कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने इस फिल्म के अंदर। शी प्लेड द रोल ऑफ एक्चुअली टू पीपल, एक टीना और एक स्वीटी। टीना जो कि बहुत ही स्वीट शाय एंड ओबीडियंट थी, एंड स्वीटी जो बोल्ड मॉडर्न और एकदम ही आउटगोइंग मुंह फट जैसे कि काजोल हैं। एंड दिस वाज वन ऑफ हर रेयर डबल रोल फिल्म्स, क्योंकि दुश्मन में भी उन्होंने डबल रोल प्ले किया था, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लेकिन हाँ, दिस वाज अ बिग चैलेंज जिनको कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस भी किया और एंजॉय भी किया, बिकॉज शी वाज प्लेइंग टू ऑपोजिट पर्सनालिटीज। काजोल की एनर्जी शूटिंग के दौरान इतनी जबरदस्त थी कि वो एक सीन किया करती थी, अपना कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम जो था उसको चेंज किया करती थी, हेयर मेकअप सब कुछ बदल जाया करता था, और फिर वो अपने ट्विन कैरेक्टर के रोल में आ जाया करती थी, ऑल इन द सेम डे। इनफैक्ट क्रू तो इस बात का भी मजाक उड़ाया करता था कि काजोल डबल शिफ्ट्स में काम कर रही है, विच वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग। एंड इसी के साथ साथ देयर वॉज अ लॉट ऑफ फन दैट वॉज हैपनिंग ऑन द सेट्स, सो मच सो दैट कि कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे थे जहां पर काजोल अपने जोक्स ही मारे जा रही थी, जिसकी वजह से होता ये था कि सब हंस दिया करते थे, और ऋषि कपूर स्पेशली हंसते ही रहा करते थे, और डायरेक्टर को बार बार टेक लेना पड़ रहा था। मैंने कहा ना, काजोल सिंस देन टिल नाउ हैज बीन स्वीटी, द आउटगोइंग बोल्ड एंड मॉडर्न, एंड दैट इज हाउ वी लव काजोल। लाइक, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हालांकि डुप्लीकेट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई थी बिकॉज ऑफ द सोल रीजन यार कि इसमें शाहरुख खान थे, वो भी एक नहीं दो दो।
2: ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर मेरे यारा उन फिल्मों की चर्चा की जा रही है जो 90s अर्ली 2000 के दौर में बनी और डबल रोल लेकर बनी। वो कॉन्सेप्ट जो आजकल तो हमें देखने को ही नहीं मिलता यार, है ना। थोड़ा सा कम ड्रामेटिक हो गए हम लाइफ में, लेकिन एट दैट टाइम बड़े ड्रामेटिक हुआ करते थे यार। और इसी दौर में बनी डुप्लीकेट, जहां पर शाहरुख खान दो रोल्स प्ले कर रहे थे, एक मन्नू का और एक बबलू का। लेकिन मजेदारी वाली बात तो ये थी कि शाहरुख खान ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया करते थे ना एक रोल से दूसरे रोल के अंदर, तो वो सेट्स पर भी यही कहा करते थे कि यार उनके दिमाग में ना दो चिप्स हैं, एक बबलू की और एक मन्नू की, तो वो उन चिप्स को स्विच करते रहते हैं सो दैट उन कैरेक्टर्स को वो प्ले कर पाए। और सेट्स की एक बात है जो क्रू मेंबर्स कहा करते थे कि शाहरुख खान कभी कभी ये भी किया करते थे मजाक मजाक में कि वो जो विलन वाली एनर्जी थी ना उसको पूरे सेट पर कैरी किया करते थे ऑफ द कैमरा, लोगों को चौंकाने के लिए और फिर सबको हंसाने के लिए। और अगर हंसने की बात की जाए तो जूही चावला भी कोई कम नहीं थी। वो शाहरुख खान की बातों पे इतना हंसा करती थी, इतना हंसा करती थी कि भाई एक टाइम तो ऐसा आया कि जब ये गाना शूट हो रहा था ना एक शरारत, उस टाइम पर उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। इवेंचुअली उसकी वजह से हुआ ये कि इस गाने में इतने रीटेक्स दिए गए और लिए गए कि इसका जो स्केड्यूल है वो ही स्ट्रेच हो गया। एक व्हाट्सएप मैसेज और दूसरी हंसी, ये दो ऐसी चीजें जो कहीं भी आ सकती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
3: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
2: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सुनील शेट्टी कॉमेडी भी कर सकते हैं, ये बात तो हमको तब पता लगी जब हमने देखी गोपी किशन।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: और इसी फिल्म से तो ये फेमस डायलॉग आया था जो आज तक भी एपिक लाफ्टर की वजह बन गया है। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड डे मोहब्बत पर 90s के डबल रोल्स की चर्चा हो रही है, जिसमें से सुनील शेट्टी का ये डबल रोल तो किसी को नहीं भूलता यार, एक गोपी का और एक किशन का। बोलो गोपी, टेल टेल। वेल, इससे पहले एक्चुअली सुनील शेट्टी जो थे ना, वो एक्शन हीरो ही थे, तो इसीलिए सबको डाउट था यार कि ये कॉमेडी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कॉमिक टाइमिंग थी यार उनकी, मतलब वो मास फेवरेट हो गए थे इस फिल्म के बाद। लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इस फिल्म में एक्शन भी था, और एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुआ ये था कि सुनील शेट्टी को चोट लग गई थी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग डिले नहीं करी एंड ही कैरीड ऑन विद हिज इंजरी एंड द शूट एज वेल। लेटर ऑन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि गोपी का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से ज्यादा मेल खाता है या किशन का, तो उन्होंने किशन के लिए ऑप्ट आउट किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स गोपी इतना भोला भाला, दुनिया खा जाए उसको, कौन गोपी बनना चाहेगा उस दौर में भी और आज के भी दौर में। लेकिन सुनील शेट्टी गोपी बने, और क्या गोपी बने। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Hep Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vida bala burga. Mirci burga.
2: हेलो,
3: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
2: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
3: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
2: क्या आप पागल हैं क्या?
3: पागल आप है, पागल आप है, पागल आप है
2: क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
3: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
2: हेलो,
3: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया, फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
3: आज के बाद घर से गए आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
11: In association with Dairy Queen, beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's, enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
12: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
13: Visual media partner, Rehab Media.
14: Production partner, Symphony.

0: सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर मीठी सुपारी,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना एक खुशबू सी आती है जो तुम्हारा पैकेट खोलते ही आया करती थी। भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी। तुम्हें खाना हम बच्चों को वैसे अलाउड नहीं था और अक्सर मैं तुम्हें खरीदती भी नहीं थी, लेकिन कुछ दुनिया की परवाह ना करने वाले क्लासमेट्स के बैग में तुम अक्सर मिल जाया करती थी। और जब कभी कभी तुम्हें चखती थी ना तो मजे और ज्यादा आया करते थे, क्योंकि जो कम होता है उसकी वक्त भी तो ज्यादा हो जाती है। क्या बोलती हो? तुम्हें जुबान पर रखना बुरा माना जाता था और कहते थे कि तुम सेहत को हानि पहुंचाती हो, लेकिन आज मेरी याद में तुम आंखों में पानी पहुंचाती हो, क्योंकि तुमसे जुड़े किस्से बचपन की शैतानी और दोस्तों के किस्सों के याद दिलाते हैं। थी मेरी एक दोस्त जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आया करते थे और सब उससे इसी वजह से दूर भाग जाया करते थे, लेकिन वो मस्त रहने वालों में से थी। तुम अक्सर उसी के पास पाई जाती थी और क्लास में सो कॉल्ड अच्छे बच्चे उसके बारे में खुसुर पुसुर किया करते थे। आज तुम्हें याद करते करते उसकी याद आ गई यार, कि उसके साथ जो होता था वो बॉयकॉट नहीं तो क्या था। मुझे भी बोला जाता था कि तुम अच्छी बच्ची हो, उसके टच में मत रहा करो। आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इतनी कम उम्र में ये सब हमें सिखाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आज मुझे ना इस बात का भी ख्याल आता है कि कितनी हिम्मत थी यार मेरी उस दोस्त में, जो ये सब जानकर भी अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश किया करती थी। पता नहीं कि वो वाकई में स्ट्रांग थी या स्ट्रांग होने की एक्टिंग किया करती थी। आज तक नहीं पता लगा मुझे इस बात का। स्कूल बदला तो ना उससे टच में रही और ना तुमसे इतनी ज्यादा मुलाकात होती थी फिर, क्योंकि तुम्हें खिलाने वाला कोई था नहीं ना, लेकिन तुम दोनों ही मेरे ख्यालों में तब भी थे और आज भी हो। वो मुस्कुराती हुई और तुम महकती हुई, तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू में आज भी खोई हुई तुम्हारी पुरानी दोस्त सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आर्ट नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

पल पल में शामिल है।

जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सलीम मर्चेंट की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कुर्बान इज कैसेट के साइड ए का पहला गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वेल, द ट्रैक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाना नहीं है, दिल का सुकून भी है।

ये बात तो सच्ची है कि जो हम आम लोग हैं अपनी आम जिंदगी में वो लव्स कहीं कहीं से ढूंढ कर नहीं ला पाते हैं जो गानों में हमें मिल जाते हैं। नाउ ये गाना इतना खूबसूरत है और इतनी खूबसूरती से ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने हमें उस इंसान से मिला दिया जिसे मिलने के बाद हमें सुकून मिलता है। रूह को सुकून मिलने वाले लोग कितने कम मिलते हैं ना जिंदगी में, और जब वो मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए ये गाना बिल्कुल एप्ट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हमें लव्स नहीं मिल पाते हैं, हमें बस महसूस हो रही होती है कोई बात, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे लफ्जों में कैसे बयां करें। वहीं ये गाना आता है जो ये कह रहा है कि तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। वहीं ये गाना हमारी मदद कर देता है क्योंकि इस गाने में यही तो शुक्रिया अदा किया गया है कि यार किस तरीके का सुकून मिला है एक इंसान से मिलने के बाद कि उसकी बाहों में ये जिस्म खिल गया है, उसकी सांसों में चैन मिल गया है, और कैसे रहा जाए उस इंसान से अब जुदा। तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। और इसी बात पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। एंड दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड जो हमारी जिंदगी में प्यार के आने पर हम महसूस कर पाते लेकिन उसे कह नहीं पाते। तो बस जी, ये गाना आपके दिल की बात को कंप्लीट करते हुए आप ही के लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ अब कि हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे मिल जाइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी।
3: शाबाश। डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11।
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: चोर करता है।
3: शाबाश। लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन।
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
4: पीके मेनन।
3: खत्म।
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता। आदमी का नाम राजकुमार राव। रेडियो स्टेशन का मिर्ची। इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Forever. And ever. And ever.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: क्या बताओ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूं?
2: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।

0: अरे साड़ी गुलाबी है, लेकिन देखिए भैया एक बात कह दें, हमारे सूरज चाचू की रोशनी के आगे इस वक्त सारा कलर फेल है। ह्यूमिडिटी अपने चरम की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन हम भी ढीठ बन के खड़े हैं कि भाई पानी पी पी के कोसेंगे, लेकिन सूरज चाचू आपकी इस गर्मी का दम तो हम भी निकालेंगे। वैसे फिलहाल 4:03 का टाइम हो गया।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: कुछ खास बातें जो हमारे कतर में हो रही हैं, उसके बारे में आपके कानों तक कुछ पहुंचाना है। कतर एयरवेज ने बहरीन, इरबिल एंड कुवैत के लिए फ्लाइट शुरू करने की बात कह दी है। फाइनली इतने दिनों के बाद अब फ्लाइट शुरू होंगी। Yes, इसके अलावा MOI ने किस तरह से 30 डेज की डेडलाइन दी है, किस बात के लिए ये बताएंगे। कैसे 6 से 8 अगस्त के बीच हमारे कतर में बारिश की कुछ बूंदे पड़ सकती है, जैसा कल शहनिया हुआ वैसा। और कतर बोट शो के लिए क्या एक्सक्लूसिव ऑफर लेकर आया कतर एयरवेज, ये सब कुछ जानना है। तो कान लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि आगे लेकर मस्त बोलो गौरव हबीब भी शाम शानदार। अगले 2 घंटे बातचीत लगातार, करक पीकर आज एनर्जी भरपूर, फलाफल खा लें तो मजा आ जाए हजूर। 89.6 मिर्ची वन। अरे डेट फेस्टिवल का भी याद दिलाना है, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vidva la murga. Milci, murga.
2: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
3: जी बोल रहा हूँ।
2: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
3: कहाँ ना सर?
2: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
3: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
2: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
3: मैं दे दूंगा।
2: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
3: 4 यूनिट?
2: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
3: क्या चढ़ाना?
2: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
3: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना?
2: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
3: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब चढ़ाऊं?
2: आपका ग्रुप मिल
3: गया सर? इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: यूरिन का भी कुछ होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
3: जी जी।
2: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
3: अच्छा,
2: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
3: क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा।
2: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
3: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
2: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
3: जी
2: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
3: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटा।
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, 2 लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
7: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
8: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number 1 mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live in

0: अरिजीत सिंह की आवाज में असर तो गहरा होता है हमारे और आपके ऊपर सूरज चाचू का।
1: मस्त मौला गौरव।
0: इसलिए गर्मी में कहीं भी निकलिए तो पानी पर्याप्त पी के निकलिए कि ज्यादा असर ना हो जाए। इन सब के बीच मस्त मौला गौरव ट्रैफिक डिपार्टमेंट की उस रिक्वेस्ट की बात करेगा, उस चीज की बात करेगा जिसके लिए जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दिया है। अगर आपकी गाड़ी को इंपाउंड किया गया है मोर देन 3 मंथ्स तो आपको यह समझना होगा कि आपको अपने व्हीकल को विद इन 30 डेज स्टार्टिंग संडे अगस्त 9 के साथ ही ले लेना है। यस, सारे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने सारे उन व्हीकल ओनर्स को बोला है जिनके व्हीकल्स को इंपाउंड किया गया था और 3 महीने से ज्यादा हो रहा है कि वो रिक्वायर्ड प्रोसीजर कंप्लीट करें और अपनी गाड़ी अगले 30 दिनों के अंदर ले लें। 9 अगस्त से 9 सितंबर के बीच आपको ये सारा काम करना है। वेल, स्ट्रीट 52 इंडस्ट्रियल एरिया में यहां पर ये सारे नेसेसरी प्रोसीजर्स जो है वो पूरे हो जाएंगे एंड जो भी आपका आउटस्टैंडिंग ट्रैफिक वायलेशन है, स्टोरेज फीस है, वो आप देकर अपने व्हीकल्स को ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग नहीं जाएंगे, अपनी गाड़ी क्लेम नहीं करेंगे इस 30 दिन के अंदर, वो भाई खत्म हो जाएगी उनकी गाड़ी। हाँ जी, उनकी इंपोर्टेड व्हीकल्स जो हैं, इंपोर्टेड व्हीकल्स हो जाएंगी सेल के लिए। ऐसे में सारा लीगल प्रोसीजर फॉलो कीजिए जितनी जल्दी हो सके। अगर आपकी गाड़ी ली गई है तो आप जाकर अपनी फीस भरकर, जो भी पेनल्टी उसको पे कर अपनी गाड़ी ले लीजिए। विद इन 30 डेज इंपाउंडेड व्हीकल्स आपको क्लेम करने हैं 9th ऑफ अगस्त से 9th ऑफ सितंबर के बीच। मुझे उम्मीद है आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक की ये जो वार्निंग है उसको सीरियसली लीजिए, वरना अपनी गाड़ी से हाथ धो देंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है और जनरल डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक ने आपसे अर्ज किया जितनी जल्दी हो सके। भैया, गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे मौसम में गाड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। हाँ जी, 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

यार कैसा हो कि आप लाइफ में मूव ऑन कर गए अपनी एक्स को छोड़कर, अब आपने नई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लिया है और पुराना वाला आपके सामने आ जाए तो फंस जाएंगे ना, हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, कितने लोग तो पैनिक कर जाएंगे। लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं कर रहा ये लड़का। अरे बात करो मैं जस की, जो कि बानी से शादी कर लेता है लेकिन किसी कारण फाइनली दोनों में बनती नहीं है और दोनों अलग हो जाते हैं। और इस दौरान जस मिल जाता है प्रीत से, जस को प्रीत अच्छी लग रही है, फिर दोनों की प्रीत बढ़ जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन इस बीच वापस बानी आ जाती है जस की लाइफ में, क्योंकि डाइवोर्स थोड़े हुआ है, वो वापस आ जाती है और फिर प्रीत और जस की कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और दोनों के बीच कह सकते हैं एक ही चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वही चीज अब इनकी जिंदगी में वापस आ रही है। तो ऐसे में क्या करने वाला है जस, ये सबका सवाल है। चलो उम्मीद यही है कि एक प्यार जो वो इंडिया में करते हैं और दूसरा जो अब्रॉड में लग रहती है, फिर दोनों की प्रीत बढ़ जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन इस बीच वापस बानी आ जाती है जस की लाइफ में, क्योंकि डाइवोर्स थोड़े हुआ है, वो वापस आ जाती है और फिर प्रीत और जस की कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और दोनों के बीच कह सकते हैं एक ही चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वही चीज अब इनकी जिंदगी में वापस आ रही है। तो ऐसे में क्या करने वाला है जस,

सो सब्सक्रिप्शन ले लो Z5 का एंड एंजॉय करो इस पिक्चर को. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द सॉन्ग चुनरी चुनरी. यार मतलब कसम बोल रहे हैं, एक गाने की लाइन से पूरी फिल्म बन गई है. जवानी तो इश्क होना है, सोन सोन बब सोन सोन. एंड अब वरुण धवन के पापा डेविड धवन ने ये फिल्म डायरेक्ट किया है, जवानी तो इश्क होना है. देखना है Z5 पर क्योंकि ये स्ट्रीम हो रही है. एंड आई एम श्योर एक शानदार कहानी जहां पर एक लड़का और दो प्रेमिकाएं जो पत्नी के रूप में एक दूसरे को देख रही हैं, क्या होता है क्या नहीं, इसके लिए तब देख लो भैया, बहुत कमाल की स्टोरी लाइन है, पूरी नहीं खोलेंगे. मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आर्ट नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.
7: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
8: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
7: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव

0: बिल्कुल पछताओगे ऐसे मौसम में, अगर आउटिंग का प्लान बीच बीच में बनाओगे तो पछताओगे। आपके साथ है, ट्रस्ट मी भैया, इतना ह्यूमिड वेदर है पूछिए मत, लेकिन कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कह रहा है शायद बारिश हो सकती है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल, कल शहनिया में बारिश हुई और आज भी चांसेस यही हैं कि कल आपको कुछ बूंदाबांदी मिल सकती है, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रेन जो होगी वो दोपहर के टाइम पर होगी, फ्राइडे का टाइम। एंड कहा जा रहा है हवाओं की रफ्तार के बीच मिस्टी फॉगी वेदर भी होगा, लेकिन बड़ी बात यह है हेजी कंडीशंस फॉलो कर रही है, तो ऐसे में हो सकता है कल आपको लोकल क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से एक बार फिर से कहीं बारिश के बारे में सुनने को मिल जाए। आज दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, 47 डिग्री पहुंच गया भैया, 47 और मिनिमम अराउंड 34 आया है। अब आगे कितने दिनों में यह 47 वाला हम लोगों को मामला झेलना है तो नहीं पता, लेकिन ह्यूमिडिटी लगातार बढ़ रही है जो कि हमारे लिए चिंता का विषय बन जाती है, पर घबराएंगे नहीं, पानी पीते रहेंगे इस मौसम में, अपने आप को लड़ने की क्षमता देते रहेंगे और एक दिन आएगा जब मौसम ठीक हो जाएगा। 89.6 मिर्ची वन पर गानों का मौसम टनाटन चल रहा है मिर्ची पर, इसको इंजॉय करते रहो कानों की ठंडक के लिए। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है। अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
2: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people. It's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे। तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क। हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी।
1: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है। इट इज वेरी इजी टू ट्रोल, बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
3: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
3: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का. इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल.
1: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून.

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: सुबोध शर्मा की आवाज में आवारा पंटू का ये गाना जुनून किसने सुनाया? ये वही है शख्स जो आपको घड़ी का टाइम भी बता रहा, 5:04।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: वैसे एक गाना ना हमेशा मेरी माइंड के बैकग्राउंड में चलता ही रहता है, जिंदगी किसी भी दौर में मैं आ जाऊं, ये पता नहीं क्यों। मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा, ऐसा कैसा थोड़ा पैसा यार, अगर बहुत जरूरी है मिल जाए तो रेट्स बढ़िया चल ले। एक कतरी रियाल के बदले इस वक्त आपको मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.08 है, 26 रुपए 8 पैसे अभी भी मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो श्रीलंकन रुपीज अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 92.02, वहीं पाकिस्तान रुपीज जनाब वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.22 पाकिस्तान रुपीज। इसके बाद तपाई को नेपाल रुपीज का रेट का बात करेगा दाजो, 1 कतरी रियाल के बदले 41.71 को भलचा रेट है भाई, हाँ जी 41.71 को रेट भाई, नहीं घर भेजन लाइक सही टाइम छो। अगर इसके बाद बंधु बांग्लादेशी टाका की बात करेगा दादा, 1 कतरी रियाल के बदले 33.95 तो 33.95 ऐसा रेट अच्छे तो बाड़ी थी के भेज दो, हाँ जी क्योंकि यू नेवर नो पैसा आएगा, जल्दी जल्दी घर भेजेंगे तो घर वाले भी मस्त हम भी मस्त, बस किसी दोस्त से उधार मिलता रहे और वो बार बार तगादा ना करे फिर हो जाते हम त्रस्त। 89.6 मिर्ची 1 पर ये थे आईपी एक्सचेंज रेट मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिका दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी
3: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
2: नहीं
3: दी थी मैं कल को। अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुनके बनाया है?
3: कोई फोटो चुनके नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पॉपुलर।
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

दो लोग अगर आंख मार दे तो फिर तीसरे को बेवकूफ बना ही देते हैं, दोस्तों का यही तो काम है। लेकिन कोई है जिसको आंख मारने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपके दिमाग को घुमा देगी, दिन में तारे दिखा देगी। बात करो दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। सोचिए बंदी केविन पीटरसन, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, फॉर्मर क्रिकेटर केविन पीटरसन के साथ कैच खेल रही है, उतनी देर में उनसे सवाल पूछती है और उस सवाल के सारे जवाब उसी बॉल में लिखे होते हैं और केविन पीटरसन एकदम से झन्ना जाते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है। ऐसा कमाल करती है सुनिशा कि मतलब आपसे बातें करिए और इस बीच आपके ही जवाब को वो कहीं लिखी रहती है ऑलरेडी पहले से। इसे कहते हैं परफेक्ट माइंड रीडिंग, परफेक्ट इल्यूजनिस्ट एंड मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर में पहली बार आ रही है 25 सितंबर, जिसकी टिकट्स आप अभी बुक कर सकते हो एट स्नूनू सिटी, यस एस सिटी स्नूनू पर ये आपको मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर अभी कंटिन्यू कर रहा है एंड ट्रस्ट मी एक शानदार शाम 25 सितंबर को होने वाली है। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर प्रेजेंटेड बाय आईपे, हमारे एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वींस पापा जॉन्स, हमारे रेस्टो पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ पार्टनर किम्स हेल्थ, इसके अलावा इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, इसके अलावा प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, ये सारे के सारे एक साथ आए हैं ताकि एक बेहतरीन शाम को हम अंजाम दे पाए। तो अपनी टिकट्स बुक करा लो क्योंकि दिमाग के ना परखच्चे जो है वो एकदम उड़ जाएंगे जब सुहानी के मेंटल शो को आप देखोगे, कहोगे भाई अलग लेवल होने वाला है। चलो जी, अगर अभी तक आपने सुहानी शाह की वीडियो नहीं देखे, गो चेक इट आउट, यू विल कम टू नो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल कुछ अलग और खास होने जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, वीकेंड पे दोस्तों के साथ प्लान भी कर लो और उनको भी बुक करा दो। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल पे चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: वैसे तो हम सबके फ्राइडे के अपने अपने प्लान होते हैं, पर ये प्लान हमारे कतर के लिए होना चाहिए। मस्त मौला गौरव आपके साथ है और मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने एक जबरदस्त इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एंड दिस इज फॉर बीच 974
1: #974 मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, इस बार अंडर द थीम आवर सी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बीच क्लीनिंग के लिए बुलाया जा रहा है और हम कहते हैं अपने फ्राइडे को एकदम मीनिंगफुल बना लो। वैसे तो हम फ्राइडे को बहुत सारी अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये फ्राइडे अगर हम दे दें इस बीच क्लीनिंग ड्राइव के लिए तो कैसा रहेगा। यस, बात कर रहा हूं मैं बीच 974 की। अगस्त 7 क्लीनअप कैंपेन शुरू करने की बात कही है मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने, ताकि हमारा बीच साफ सुथरा रहे और आने वाले टाइम में जब मौसम बेहतरीन हो तो हम इस बीच पर बहुत सारी अपनी पार्टीज प्लान कर सकें। वेल, उसके लिए बीच 974 क्लीनअप कैंपेन चलेगा और मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी के लिए हम सबको इन्वाइट करी है। शाम 6 बजे ये शुरू होने जा रहा है। अगर आप कतर के मरीन एनवायरमेंट को अच्छे से रखना चाहते हैं और वॉलंटियर वाला कल्चर आपके अंदर ढला हुआ है, कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा लेते हैं, सो दिस इज द राइट मोमेंट। कतर के हमारे बीचेस, हमारे स्काईलाइन का जो व्यू है और सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा रहे तो थोड़ी जिम्मेदारी तो हमें भी लेनी पड़ेगी। तो कतर के जीरो वेस्ट इनिशिएटिव एंड नेशनल विजन 2030 का पार्ट बनने के लिए ये एक डायरेक्ट चांस आपको मिल रहा है। बस कोशिश कीजिए, अपनी फैमिली के साथ आइए और शाम 6 बजे के करीब इस काम में एक छोटा सा ब्रेक लेकर थोड़ा सा मदद करिए। आने वाले टाइम में ये हमारे कतर को बहुत खूबसूरत बना देगा, इसी उम्मीद में कि आप भी इससे जुड़ेंगे। मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: I like the way you move right there.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
3: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
2: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah live.

आपने अपनी ले ली कि नहीं, खलास, बरी, सीशी, कनेजी, ये सब ली कि नहीं ली? तो मतलब आप अभी तक महाली रुताब फेस्टिवल में गए ही नहीं है। अरे ईस्टर्न स्क्वायर सुख वाकिफ में 11th लोकल डेट फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ। 25 जुलाई से शुरू हो चुका है, 10th ऑफ अगस्त, यानी कि आपके पास ये आखिरी वीकेंड है। अगर जा सकते हो तो जाओ और जल्दी जल्दी अपने लिए ले लो ये सारी वैरायटी की खजूर। यस, क्योंकि हजूर मेरा ये मानना है कि ये वो टाइम होता है जब लोकल फार्म से निकलकर बेहतरीन क्वालिटी के डेट जो है आपका और हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। अब जिंदगी में आपने जिस भी डेट पर गए हो अपने दांत खट्टे ही कराएं, लेकिन ये पहली डेट है जो मिलती है और आपके मुंह मीठे हो जाते हैं। इसी उम्मीद में कि आप इस वीकेंड अपना प्लान बनाए हुए हो और जरूर जा रहे हो ईस्टर्न स्क्वायर सुख वाकिफ के 11th लोकल डेट फेस्टिवल में, जहां पर आपको सीजनल फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। मस्त मौला गौरव बस इतना ही कहेगा, इंसान जिंदगी में वैसे ही इतना दुखी है, चारों तरफ से परेशान है, ऐसे में थोड़े मौके अगर सेलिब्रेशन के आ जाए और लोग आपको बिना बात कैसे खजूर आगे करके कहें हबीबी जी भादी, बस खाइए और थैंक यू कहकर एक दो वैरायटी खरीद भी लीजिए। चलिए इस उम्मीद के साथ कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो और बार बार आपको मीठा मुंह करने के लिए डेट्स खाना पड़े, मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा अब सैटरडे की शाम शानदार में यही मिर्ची पर। तब तक ले हबीबी मस्त सलामा एंड सुहानिशा लाइव इन कतर के टिकट्स बुक कर लो एस सिटी स्नूनू पर, जहां पर आपके पास मौका है अभी अर्ली बर्ड में डिस्काउंटेड टिकट्स लेने का। तब तक मिर्ची है ना, मस्त सलामा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

नमस्ते दोस्तों, आज की पारी सिर्फ गानों की नहीं, उन लोगों की है जो फैमिली चॉइस से बनती है। फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, जो बिना इनविटेशन के आ जाते हैं, बिना जजमेंट के सुनते हैं और बिना वजह साथ खड़े रहते हैं। फ्रेंडशिप डे स्पेशल में स्वागत है। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। शुरू करते हैं एक एवरग्रीन यारी एंथम के साथ। गाने का नाम है यार बिना चैन का हारे। लेट्स

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, डीरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. Supply.
2: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
6: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
3: The mentalist Suhani Shah, live.

हाँ, लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक अच्छा दोस्त हो तो जर्नी जरूर ब्यूटीफुल हो जाती है। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका। इसीलिए तो है गाना गाने।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
8: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
9: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
10: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।
9: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

दोस्तों क्लब मिर्ची डीजे में चटन मिर्ची और यौन दिखा के साथ दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल एंड स्कूल बेंच हो या ऑफिस डेस्क लेट नाइट कॉल हो या मॉर्निंग कॉल्स दोस्त हर फेज में अपग्रेड होते ही रहते हैं तरसते हैं हम ऐसी फ्रेंडशिप के लिए

हाँ, दो पापी एक साथ मिल गए तो दोस्त बन जाते हैं। फ्रेंडशिप का रूल सिंपल है, एम्बैरस भी वही करेगा जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, राइट? आहो आहो टू दैट क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओन योंटिका।

away, dance away your blues with Club Mirchi. Club Mirchi.

पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में, जहां अनजाने मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। कुत्ते दोस्त, कमीने दोस्त, आई लव यू वाले दोस्त, मासूम दोस्त, दोस्त जिनमें बहुत कीड़े होते हैं, जिनके साथ आप हंसते हैं रोते हैं पर जिंदगी जीना सीखते हैं। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
4: मैं करूँ?
5: आप करोगे?
4: नहीं, मैं करवाता हूँ. मतलब मेरा होता है.
5: तो वो तो पता है. मेरा बस चलता है एक एक को घुसण मार के आती हूँ.
4: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड?
3: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल. बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल.
2: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

एक मेमोरी और सारी यारी फिर से रिवाइंड हो जाती है। दोस्ती के पल कभी नहीं बीतते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है हम उसी दोस्त से रूबरू होते रहते हैं। लव मिर्ची विद डीजे विचर मिर्ची और योंतिका।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking, mama।

एक ऐसा दोस्त है जिसे कट्टी हो जाने पे भी भुला नहीं सकते. Cheers to that friendship club मिर्ची with DJ Richard and मिर्ची ओयोंतिका and best conversations उसी के साथ होती है जो 5 मिनट से शुरू होकर सनराइज तक चलती है, right? सुबह

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
2: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
6: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah.

ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है। अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
4: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे। तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क। हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी।
3: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है। इट इज वेरी इजी टू ट्रोल, बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood Boldal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कारपेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live.

हर गैंग का एक एंटरटेनर होता है जो सबका दिल लूट लेता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्डन मिर्ची और योंतिका, और उसके बिना ग्रुप इनकम्प्लीट है। कोई कहे कुछ भी कहता रहे, हम सब उस दोस्त के ही फैन है कि नहीं।

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका विद यू एंड दिस इज

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: अंकल मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है, मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
2: अरे मामू सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में रात के आठ की पारिंग विद क्लब मिर्ची
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
3: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर

नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है।
0: Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
0: The mentalist Suhani Shah.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
8: Ladies and gentlemen.

party people, Club Mirchi ja rahi hai. This is the Friendship Day special with me, Mirchi Oyontika and DJ Richard. Friends ही वो लोग हैं जो आपकी weirdness celebrate करते हैं. ऐसी दीवानगी देखी.

डांस स्टेप्स याद हो या ना हो, दोस्त साथ हो तो फ्लोर अपना है। जूते दो, पैसे लो और हमारे साथ नाचते रहो ऑन क्लब मिर्ची।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
4: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
3: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
5: Only on Mirchi. It's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: क्या बताओ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूं?
2: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।
3: मिर्ची घड़ी में बज गए 9 एंड कीप एंजॉयिंग योर पार्टी विद क्लब मिर्ची।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी और न सुनी होंगी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's Hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
8: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट SCD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

ये बबली तो जरूर बदमाश है, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका, लेकिन बाकी बातें बाद में, पहले एक और गाना चाहिए यार। दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
4: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? कासम में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
5: पावभाजी.
4: शाबाश. डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
6: 11.
4: गोली मार भेजे में भेजा
5: चोर करता है.
4: शाबाश. लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
5: गांधीयन.
4: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
5: पीके मेनन.
4: खादम.
3: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता. आदमी का नाम राजकुमार राव. रेडियो स्टेशन का मिर्ची. इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोलडाल.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal.
7: Only on Mirchi. It's hot.

सनम तेरी कसम, गुड फ्रेंड्स आर लाइफ्स रेयरेस्ट प्लेलिस्ट। अगर आपको एक सच्चा यार ना मिले तो जिंदगी बर्बाद। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और यौन टिका।

गर्ल गैंग को टैग करना मत भूलना. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका सेलिब्रेटिंग एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप्स. गाने का नाम है वो मनी.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब? नहीं,
3: कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
2: क्या सुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए।
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: 89.6
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

हाँ, लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक अच्छा दोस्त हो तो जर्नी जरूर ब्यूटीफुल हो जाती है। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। इसीलिए तो है गाना, गाने का नाम है अगर तुम साथ हो।

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आर्ट नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
9: Ladies and gentlemen.

नमस्कार दोस्तों, क्लब मिर्ची डीजे में चटन मिर्ची और योंदिका के साथ दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल। एंड स्कूल बेंच हो या ऑफिस डेस्क, लेट नाइट कॉल हो या मॉर्निंग कॉल्स, दोस्त हर फेज में अपग्रेड होते ही रहते हैं। तरसते हैं हम ऐसी फ्रेंडशिप के लिए।

दो पापी एक साथ मिल गए तो दोस्त बन जाते हैं। फ्रेंडशिप का रूल सिंपल है, एम्बेरस भी वही करेगा जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, राइट? आहो आहो टू दैट क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओन योंटिका।

away, dance away your blues with Club Mirchi.

पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में, जहां अनजाने मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। कुत्ते दोस्त, कमीने दोस्त, आई लव यू वाले दोस्त, मासूम दोस्त, दोस्त जिनमें बहुत कीड़े होते हैं, जिनके साथ आप हंसते हैं रोते हैं पर जिंदगी जीना सीखते हैं। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
4: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
3: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna.

एक मेमोरी और सारी यारी फिर से रिवाइंड हो जाती है। दोस्ती के पल कभी नहीं बीतते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है हम उसी दोस्त से रूबरू होते रहते हैं। लव मिर्ची विद डीजे विचरण मिर्ची और योंकिका।

हेलो पीपल, वी कैन फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्च ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंटिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉनस्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू क्लब।

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
2: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है
1: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा क्या करूं
2: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो
3: राक, राक।

हर गैंग का एक एंटरटेनर होता है जो सबका दिल लूट लेता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और उसके बिना ग्रुप इनकम्प्लीट है। कोई कहे कुछ भी कहता रहे, हम सब उस दोस्त के ही फैन है कि नहीं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. सबसे ऑनेस्ट रिलेशनशिप जहां आई एम फाइन बोलने पर भी दोस्त समझ जाए, वही तो है फ्रेंडशिप. दिल से रे क्लब मिर्ची.

एक ऐसा दोस्त है जिसे कट्टी हो जाने पे भी भुला नहीं सकते. Cheers to that friendship club मिर्ची with DJ Richard and मिर्ची Oyontika and best conversations उसी के साथ होती है जो 5 मिनट से शुरू होकर सनराइज तक चलती है. राइट सुबह

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
2: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's Hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
6: Ladies and gentlemen.

मानसून की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता. सो वेयर एवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर. डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू. लेट्स गो.

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त। लेट्स गो बेबी।

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

0: goes on with Club Mochi.
1: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's Hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
7: On a ride.
0: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

7 स्टेप्स याद हो या ना हो, दोस्त साथ हो तो फ्लोर अपना है। जूते दो, पैसे लो और हमारे साथ नाचते रहो ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
4: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे. तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क. हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी.
3: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है. It is very easy to troll, but it's not easy to go to the gym. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
6: On a ride.
0: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard. Only on

Eat, sleep, rave, repeat.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: अरे सर जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
2: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
3: I'm joking, mamma mia, come on.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी और न सुनी होंगी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, अब गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
2: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
3: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
2: क्या आप पागल हैं क्या?
3: पागल आप है, पागल आप है
2: क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
3: बोले चले जा रहे हैं, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
2: हेलो,
3: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया, फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
3: आज के बाद घर से कभी आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल पे चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आर्ट नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
8: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन,

ये बबली तो जरूर बदमाश है, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, लेकिन बाकी बातें बाद में। पहले एक और गाना चाहिए यार, दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल।

सनम तेरी कसम, गुड फ्रेंड्स आर लाइफ्स रेयरेस्ट प्लेलिस्ट। अगर आपको एक सच्चा यार ना मिले तो जिंदगी बर्बाद। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और एन मिर्ची और योंतिका।